एफएम 101 MHz की फ्रीक्वेंसी पर हम आकाशवाणी भदरवा से आपसे मुखातिब हैं। सामईन, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ महीने की 9 तारीख, बामुताबिक 23 मई 2026 ईस्वी। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:56 और 50 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की मजलिस का आगाज़ होता है।

ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 MHz की फ्रीक्वेंसी पर सामिन सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ और 8:23 पर उर्दू में खबरें रिले की जाएंगी। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: नमस्कार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का

0: का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि LPG का जो रिजर्व है that should be minimum 30 days with them and they are working on it and similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders.
4: म्यांमार के राष्ट्रपति

0: भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
2: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में द कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days.

0: clash against defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. Chasing a formidable target of 215 runs, the 2022 champions produced a batting masterclass, reaching 219 for 3 in just 18.4 overs. Skipper Shubman Gill led from the front with a scintillating 104 off 53 balls, while Sai Sudarshan scored 58 runs. Gill was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Naresh. Ministry of Home Affairs clears record CAPF deployment for 57-day Amarnath pilgrimage, says the Pioneer. IMD lowers monsoon outlook and puts off date of onset to June, is a top headline in the Hindu. Decades driest monsoon looms. Met cuts estimate to 90% of 50-year average, notes the Indian Express. Under the headline, next energy challenge, cheap power, costly transition, Financial Express writes that though consumers understand the long-term savings for a push to green energy, the challenge is affordability at the point of purchase. Hindustan Times carries a picture of Blue Origin's New Glenn rocket exploding in a massive fireball during a test on a Florida launch pad as the firm was preparing the vehicle for its fourth launch, slated to deploy a batch of satellites for Amazon's Leo. In its editorial, Breather for Now, For How Long? The Times of India writes that as a tentative US-Iran deal awaits Trump's signature, the global economy is hoping for a break. But geopolitics as well as politics in Trump camp and among Iran hardliners means conflict can restart after a few months. And finally, demand for gold turning cold on steep duty hike. Under that headline, the Economic Times says that gold sales have fallen 70% on muted consumer sentiment, already hurt by surge in fuel and food prices. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजाराई जारी रहने के पेश नजर एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाति जजगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज बिहार में बौद्ध गया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में

0: रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदामात का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का छठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात खास तौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जचगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
1: आदाद व शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जच्ची के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सेमाही में मिलने वाली जच्ची के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन के हामला होने की मजमू शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में खवातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियारात के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन खवातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। पहले ये 33.3% थी, जबकि अब ये तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: म्यांमार के सदर मिन होंग यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तेहाती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामाजगारों से बात करते हुए दाते खारजा के तर्जुमान रणजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरायज अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात

0: हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणी अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आजाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमायां किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर सीएसआईआर एनआईओ कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीम शान इम्तजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय ज़ियाफ़त का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज़्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज फोर्स बीएसएफ को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में बीएसएफ एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटजिक एतबार से अहम 2 नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि बीएसएफ के कयाम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के बीएसएफ के नजरिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ते नजर को इलाकाई सलामती के नए नुक्ते नजर से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के कयाम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में झालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरिकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्रा 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए, अलबत्ता वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने से चूक गए। खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाकई चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जड़ी सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्म इजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मीशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजामा इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतादिन निकात पर इत्तिफाक राय में पेशरफ्त हुई है, नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के बेशतर अखबारात ने उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बंद के इंतकाल पर उर्दू दुनिया और उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किए जाने और ताजियती नशिस्तों के अहतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नज़र LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जचगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बौद्धगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM 101 MHz की फ्रीक्वेंसी पर हम आकाशवाणी बदरवा से आपसे मुखातिब हैं। सामीन सुबह के 8:45 हुए हैं और आप सुन रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम वर्ल्ड नो टोबैको डे। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं GMC जम्मू की माहिर फिजिशियन डॉक्टर पायल गुप्ता का एक खास इंटरव्यू जिसमें वह तंबाकू नोशी के नुकसानात और उससे बचाव के बारे में अहम मालूमात फराहम करेंगी। उनसे गुफ्तगू की है राजा रहबर ने।

0: बट उनको ये नहीं पता कि इसके कितने बैड इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ पे. तो फिर इसलिए बेसिकली 31 मई को हम इस चीज के लिए ये सेलिब्रेट करें, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द यूथ. ये जैसे मैंने आपको बताया, ये इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेट एज इन कि ये इसलिए मनाया जा रहा है कि हम बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर सके टोबैको को लेके, कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है. तो जैसे कि आजकल क्या जो यूथ है वो बहुत ज्यादा एंगेज है टुवर्ड्स दिस प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल अल्कोहल और ये टोबैको स्मोकिंग, ये सब चीजों को लेके. बट क्योंकि वो ये सब चीजें लेते हैं पीयर प्रेशर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि हम देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स ले रहे हैं, उनके रिलेशन में ले रहे हैं, तो वो ये सब चीजें देखते हैं, तो उसके वजह से और ज्यादा इस चीज को इन प्रैक्टिस में एंगेज होते हैं. बट बेसिकली इनको इसका क्या हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं पता इनको. ये फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों को खराब करता है. फिजिकली ये हमें हमारे जो बेसिक ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, जैसे लंग हो गए जो हमारे बेसिकली ऑक्सीजनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उसको ही डैमेज कर देता है. ये लंग कैंसर मैनिफेस्ट होता है इससे, ओरल कैंसर्स होते हैं और भी हाइपरटेंशन, ये सब चीजें से मैनिफेस्ट होती है. और मेंटली ये बेसिकली एडिक्शन है एक तरह की. अगर आप एक बार ले ले तो आपको शायद अच्छा लगेगा, आप नेक्स्ट टाइम ले लोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, तो उसके वजह से वो एडिक्शन के रूप में मैनिफेस्ट होता है कि आप बार बार उसको लेते हो और आप उसको छोड़ नहीं पाते हो. तो वो आपको सिर्फ फिजिकली, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है.
1: कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ये दिन जो है आज हम मना रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि तंबाकू नोशी इंसानी जिस्म को सबसे ज्यादा किस तरह मुतासर करती है मैम?
0: मुझे लगता है ये फिजिकल से ज्यादा मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि इसमें एडिक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. अगर आप किसी चीज को लेके एडिक्ट हो जाते हो तो आप उस चीज को बार बार कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखते हो. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें निकोटीन होता है, आप इसको बार आपको आप फर्स्ट टाइम लेते हो आपको अच्छा लगता है, आप सेकंड टाइम लेते हो आपको अच्छा लगता है. जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप में वो चीज होती है कि आप उसको बार बार लेते हो, आप ये चीज समझ रहे हो. तो आप उसको जितना लोगे, जितना कंज्यूम करोगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ को तो इम्पैक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर दिस मेजर ऑर्गन सिस्टम्स एज वेल. तो ये हमारे बेसिकली जैसे हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, इन सबको धीरे धीरे धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली डैमेज करता है. तो आप आज ले रहे तो आपको आज तो नहीं सिम्टम्स आएंगे, आपको शायद कल भी नहीं आएंगे, आपको 10 दिन के बाद भी नहीं आएंगे, बट सालों के बाद जब आपकी आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको आपको कई बार ये इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तरह मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि वो लंग कैंसर की तरह होता है. और बड़ी बार ये बेसिकली आपको कैंसर्स की तरह अगर मैनिफेस्ट करेगा, और ये ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीजेस की तरह ज्यादा मैनिफेस्ट करता है.
1: अमीन, आज हमारे साथ डॉक्टर पायल गुप्ता जी हैं जो एक फिजिशियन हैं और इस वक्त अपनी ड्यूटी जीएमसी जम्मू में अंजाम दे रही हैं। इन्होंने एसडीएच भदरवा में भी एक महीना जो है यहाँ अपनी सर्विसेज अंजाम दी और यहाँ की आवाम की भी खिदमत की। आज हम उन्हीं से ये गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत ही इनकी जो है हेल्थ के रिलेटेड जब भी इनसे बात हुई तो बहुत ही मुस्तफ़ी जानकारी हमारे सामीन को मिली। मैम, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सिगरेट नोशी से कौन कौन सी बड़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं?
0: मैंने जैसे आपको बताया कि ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको एकदम से उसके सिम्टम्स आए और आप वो उस तरह से मैनिफेस्ट हो. ये क्रॉनिक डिजीज की तरह ज्यादा मैनिफेस्ट करती है, ये धीरे धीरे आपके ऑर्गन सिस्टम्स को डैमेज करती है. और सबसे मेजर तो जैसे हो गया है ओरल कैंसर, ये तो आप एड्स में भी देखते होंगे कि कितने लोगों को आज के टाइम पे कि ओरल कैंसर और लंग कैंसर का प्रेवलेंस कितना बढ़ चुका है. तो ये बेसिकली एक्यूटली प्रेजेंट नहीं करती है, कि एकदम से सिम्टोमेटोलॉजी नहीं आती है आपको, ये धीरे धीरे और स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है. तो ये चीज आपको उस टाइम पे रियलाइज नहीं होती, बट विद टाइम जब आप ग्रेजुअली इसको कंज्यूम करते हो तो आपको, और सिर्फ कैंसर्स नहीं, और सिर्फ ये नहीं, आप सीओपीडी की तरह मैनिफेस्ट होती है ये आज के टाइम पे. जैसे जीएमसी क्या कहीं पर भी आप देख सकते हो कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है हमारी, मोस्टली 60 ईयर अबव, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके आती है. तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि इनके लंग्स पूरे के पूरे डैमेज होते हैं, और वो उनका सबसे बड़ा कॉज ही होता है ये स्मोकिंग और ये सब कंजम्पशन ऑफ दिस निकोटीन एंड ऑल. तो सबसे मेन तो इसका यही है कि ये मतलब लाइक लंग्स हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, और इस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है.
1: क्या सिर्फ सिगरेट पीने वाला मुतासिर होता है या आसपास मौजूद लोग भी नुकसान उठाते हैं मैम इसका?
0: स्मोकिंग जितनी डेंजरस होती है उतनी ही डेंजरस पैसिव स्मोकिंग भी होती है। जो स्मोक कर रहा होता है सिर्फ उसको ही

0: ये डैमेज नहीं होता। इनफैक्ट जो उसके विसिनिटी में और जो सराउंडिंग्स में जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं उनको भी पैसिवली वो डैमेज करता है। तो इसका ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि वाई वी शुड क्विट इट।
1: वजह फरमाया आपने कि जो सिगरेट नोशी कर रहा है वो तो इससे मुतासिर हो रहा है, लेकिन अपने साथ साथ वो अपने आसपास में जो उसके लोग हैं उनको भी मुतासिर कर रहा है जिनका सिगरेट नोशी से या तंबाकू से कोई भी लेना देना नहीं है। मैम, नौजवान नस्ल में तंबाकू नोशी के बढ़ते रुझान की बड़ी वजूहात आपकी नज़र में क्या है?
0: पीयर प्रेशर सबसे ज्यादा तो मुझे यही लग रहा है कि, और जो आज के टाइम पे इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही हैं वो सब चीजें जो हमारे बेसिकली यूथ को ये तो नहीं पता है कि इसके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, बट वो बेसिकली पीयर प्रेशर में इस चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। बट हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान जो 2020 में इन्होंने लॉन्च किया था, उसके उसके अंडर इन्होंने काफी इन्होंने बेसिकली कैंपिंग स्टार्ट की है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, विलेजेस में, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस। और एट द सेम टाइम दे हैव क्रिएटेड मल्टीपल डी एडिक्शन सेंटर्स एज वेल। सो जो बेसिकली हमारे हमें फिजिकली और मेंटली बेटरमेंट के लिए कि हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं, और स्पेशली हमारा जो यूथ जो बेसिकली हमारा फ्यूचर है हमारी कंट्री का और जो सबसे ज्यादा ही उससे इम्पैक्टेड है इस चीज से, तो उनके लिए कितने सारे डी एडिक्शन सेंटर्स क्रिएट किए गए बाय द गवर्नमेंट। तो आई थिंक हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। और एट द सेम टाइम आई थिंक कि ये जो एक स्टिग्मा है ना कि कहीं फैमिली मेंबर्स होते हैं जो अपने जिनको पता है कि उनके बच्चे इस चीज से कितना ज्यादा इम्पैक्टेड है, तो वो उनको कभी भी डॉक्टर्स के पास नहीं लेके जाते, स्पेशली साइकेट्रिस्ट के पास नहीं लेके जाते। बट उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि जितना ये डॉक्टर्स को दिखाएंगे, जितने ये साइकेट्रिक विजिट करेंगे, उतने ही ज्यादा उनका जो बच्चे हैं वो भी हेल्दी रह पाएंगे और इतने इजिली वो इस चीज से निकल पाएंगे बाहर। अदरवाइज मतलब दे आर नॉट गोइंग टू क्विट इट। इसी को ही एडिक्शन कहा जाता है।
1: बिल्कुल, आपने बजा फरमाया मैम कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो है वो और अपने
0: पेरेंट्स ज्यादा
1: बच्चों के।
0: रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि जो इस चीज से ज्यादा जिनको इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यंग ही है, एडल्ट्स हैं या फिर तो यंगस्टर्स हैं, तो उनको तो इतना होता नहीं है, नॉलेज नहीं होता है, तो इसमें पेरेंट्स ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर वो जाके उनके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो जाके अगर एक स्टेप लेते हैं कि उनके बच्चों का हेल्थ रहे, ठीक रहे, अगर वो उनको आगे जाके साइकेट्रिस्ट और डी एडिक्शन सेंटर्स में दिखाएंगे तभी जाके तो उनकी लाइफ हेल्दी हो पाएगी ना।
1: हाँ बिल्कुल, इसके लिए गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव जो है लगातार चल रहा है। जैसा आपने बात की कि 2020 से नशा मुक्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, और इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में एलजी साहिब की जानिब से 90 दिन का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान जो है वो चल रहा है बड़े ज़ोरों से। और इसमें यही मकसद है इसका कि अपने यूथ को जो है वो इस नशे की लत से बाहर निकाल कर उनको सही रास्ते पर लाया जाए। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक एज अ डॉक्टर, अगर कोई शख्स तंबाकू छोड़ना चाहे तो शुरुआत वो कैसे करे?
0: सबसे पहले तो आई थिंक इसमें मेजर चीज है कि जो आपका आपकी आपके सराउंडिंग्स में लोग कैसे हैं, तो सबसे पहले तो वही सबसे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि आपके आसपास लोग कैसे हैं। अगर वही अगर आपके आसपास एल्कोहलिक्स होंगे या जो टोबैको कंज्यूम करते होंगे, तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो आप तो वैसे छोड़ ही नहीं सकते हो। तब मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा रोल प्ले इनके पेरेंट्स इनकी फैमिली करती है, तो वो धीरे धीरे अगर जैसे उनके फैमिली को ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा बच्चों से ज्यादा, अगर वो जाएंगे अगर वो इनिशिएटिव लेंगे कि हाँ इनको ठीक है डी एडिक्शन सेंटर्स में लेके जाना है या जो भी, और तब जाके क्योंकि आजकल काफी मेडिसिन भी अवेलेबल है जो हेल्प करती है क्विट करने में निकोटिन, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जो आप एकदम से क्विट कर सको। अगर आप इसको इतनी इजिली क्विट कर सकते हो तो इसको कभी एडिक्शन होती ही नहीं है ना, तो इसलिए आप धीरे धीरे यहाँ इसकी काफी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं, तो अगर वैसा आप करोगे तो काफी बेटर हो सकता है।
1: क्या तंबाकू छोड़ने के बाद जिस्म दोबारा सेहतमंद हो सकता है?
0: वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे उसको क्विट कर रहे हो, क्योंकि अगर तो आप अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप अगर उसको छोड़ दोगे तो वो टाइम ऑब्वियसली आप रिकवर कर जाओगे, बट एक स्टेट आज से जाती है जब आप उसके बाद आप छोड़ोगे तो आप जो उसके डैमेजेस है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, तो आपको पता है कि हमारे पास इतना एडवांसमेंट नहीं है कि हम कैंसर को ट्रीट कर सके, तो जब आप ऐसी क्रॉनिक डिजीज के साथ आप हो जाओगे इन्वॉल्व तब तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी रिकवर। तो वही ना, बेटर लेट देन एवर।
1: डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि खवातीन और हामला खवातीन पर तंबाकू नोशी के क्या असरात मरतब होते हैं?
0: इसमें बेसिकली ये होता है, जैसे टोबैको, मैंने जैसे आपको बताया कि वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पता है जितने भी ये न्यूट्रिशन होते हैं बच्चे को मदर से, प्रेग्नेंट लेडी से थ्रू प्लेसेंटा जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो उसको ही डैमेज करना शुरू कर देता है। तो अगर वो उसको ही डैमेज करना शुरू कर देगा तो बच्चे को तो न्यूट्रन नहीं जा पाएंगे, तो उसके वजह से मिसकैरेज होने का या लो बर्थ वेट या स्टिल बर्थ होने का ज्यादा चांसेस होता है। मदर को प्रेगनेंसी होती है और साथ में प्रेगनेंसी में डैमेज जो भी होता है उससे हाई ब्लड प्रेशर और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की तरह वो मैनिफेस्ट करता है। बाकी उसके बहुत सारे इंपैक्ट्स होते हैं, जैसे लो बर्थ वेट, प्री मेच्योर बर्थ और हायर चांसेस ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, और बच्चों के भी लंग्स पे ये इम्पैक्ट कर सकता है, ब्रेन पे इम्पैक्ट कर सकता है, और साथ में सडन इन्फैक्ट इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी हो सकता है। तो
1: क्या
0: ये
1: जहनी दबाव या डिप्रेशन तंबाकू नोशी की तरफ ले जाता है, स्मोकिंग की तरफ ले जाता है? जहनी दबाव हो या डिप्रेशन हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल, डिप्रेशन जो मेंटल हेल्थ होती है, अगर आप मेंटली हैप्पी रहेंगे और हेल्दी रहेंगे तो आप इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं, बट आप जितने डिप्रेस्ड होते हैं तब आप तब ज्यादा चांसेस होते हैं इन सब चीजों में इंडल्ज होने के, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग और अल्कोहल।
1: सुनने वालों को क्या पैगाम होगा, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से?
0: कि टोबैको स्मोक टोबैको का कंजम्पशन को बिल्कुल स्टॉप करो, क्योंकि वो आपको फिजिकली एट द सेम टाइम, मेंटली एट द सेम टाइम, आपके जो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, हर चीज को इम्पैक्ट करती है। तो मैं यही बोलूंगी जो भी यूथ है हमारा, उसको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको हर जितने भी पॉसिबल वेस होते हैं आपके लाइफ के, वो उन सब चीजों को स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करती है।
1: सामिन, ये थी डॉक्टर पायल गुप्ता जी, जिन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से इस दिन पर रोशनी डाली और इसके मज़र असरात के बारे में तफसीलन जानकारी दी। सामिन, तंबाकू छोड़ने के आसान तरीके की अगर बात करें तो तंबाकू को छोड़ना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। चंद अहम इकदाम अगर किए जाएँ तो हम इस वबा से नजात पा सकते हैं, यानी मज़बूत इरादा करें, सिगरेट नोश दोस्तों से फासला रखें, वर्जिश और वॉक को मामूल बनाएं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, जहनी दबाव कम करें, घर वालों की सपोर्ट हासिल करें, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा करें। याद रखिए, ज़िंदगी की असल खूबसूरती सेहत में है, धुएं में नहीं। सामिन कराम, आज के सुबह खैर में हमने आलमी योम इंस्ताद तम्बाकू नोशी यानी वर्ल्ड नो टबैको डे के हवाले से गुफ्तगू की। हमने जाना कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक खामोश जहर है जो इंसान की सेहत, खुशियों और मुस्तकबिल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है। अगर आज का प्रोग्राम किसी एक शख्स को भी सिगरेट छोड़ने की तरगीब दे सका, अगर कोई नौजवान इस लत से बच गया, अगर कोई वालदैन अपने बच्चों को इस खतरे से आगाह कर सके, तो यकीनन हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। याद रखिए, सेहत अल्लाह की नेमत है, इसे धुएं के हवाले ना कीजिए। डॉक्टर पायल साहिबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कीमती वक्त निकालकर हमारे सामीन की रहनुमाई की। अब इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान राजा रहबर जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़। सुब्ह खैर।

FM 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। सामिन, सुबह के 9:06 हुए हैं, अब समाप्त कीजिए रोज़गार खबरनामा। इंडियन आर्मी की एक इत्तला के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से TGC यानी टेक्निकल ग्रेड कोर्स की आसामियों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। आसामियों की कुल तादाद 30 है, जिसमें कोर इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रीम के लिए 8 असामियाँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 6-6 असामियाँ और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग MSc के लिए 2-2 असामियाँ दरकार हैं। तालीमी काबिलियत में उम्मीदवार के पास किसी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BE, BTech या MSc इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री का होना ज़रूरी है। उम्र की हद में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के

उम्र की हद 20 से 27 साल रखी गई है, जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकार के जाब्ते के मुताबिक उम्र की हद में छूट रखी गई है। उम्मीदवार को दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 11 जून 2026 मुकर्रर है। मज़ीद जानकारी उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। सामिन, वेबसाइट एक बार फिर से दोहराते हैं, www.joinindianarmy.nic.in। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक इतला के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 100 है, जिसमें स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स रेगुलर बेसिस के लिए 88 असामियां और बैकलॉग ऑफिसर्स के लिए 20 असामियां 12 असामियां दरकार हैं। तालीमी काबिलियत में उम्मीदवार को किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना लाजमी है। उम्र की हद में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 23 से 32 साल, OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 23 से 35 साल, SC ST उम्मीदवारों के लिए 23 से 37 साल और PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 23 से 47 साल रखी गई है। उम्मीदवारों को दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरख्वास्त की फीस जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ₹750 रखी गई है, जबकि SC ST PWBD के उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त की फीस माफ़ रखी गई है। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 जून 2026 मुकर्रर है। मज़ीद जानकारी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार SBI की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है http://sbi.co.in। सामिन, वेबसाइट एक बार फिर से दोहराते हैं, http://sbi.co.in। सामिन, अभी आप समाप्त कर रहे थे रोज़गार खबरनामा। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 MHz की फ्रीक्वेंसी पर। समीन, अब पेश है खुलासा अब से लेकर रात 10 बजे तक रिले व नष्ट किए जाने वाले प्रोग्रामों का। समीन, अब से थोड़ी देर बाद यानी 9:20 पर आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले की जाएंगी। उसके फौरन बाद यानी 9:30 पर हमारे स्टूडियो से आप समाप्त करेंगे कश्मीरी मौसिकी।

शाम 5 बजे आप हमारे स्टूडियो से समाप्त करेंगे भद्रवाही मौसिकी। 5:30 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का प्रोग्राम।

शाम 6:30 पर हमारे स्टूडियो से आप समाप्त करेंगे फिल्मी नगमे। शाम 7 हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन, 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, 7:40 पर उर्दू में खबरें और रात 8 प्रोग्राम वादी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा।

रात 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप समाप्त करेंगे सराजी मौसिकी, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ एट 9 और रात 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। रात 9:30 पर हमारे स्टूडियो से आप समाप्त करेंगे गाने पुराने। सामने ये था खुलासा, अब से लेकर रात 10:00 तक रिले व नष्ट किए जाने वाले प्रोग्रामों का। सामिन, आइए अब आपको सुनवाते हैं हीना फिल्म से नगमा। लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमे के बोल लिखे हैं नक्श लयालपुरी ने और मौसिकी तरतीब दी है रविंद्र जैन ने।

सामिन, सुबह के 9:20 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले की जाएंगी। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: प्लास्टिक बैग्स कम यूज करो, रीयूजेबल बैग्स कैरी करो।
1: वाह, शॉपिंग भी अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली।
0: और पब्लिक प्लेसेस पर कचरा फेंकते हुए सोचा करो, स्वच्छ बाजार और साफ गलियां ही सेहतमंद जिंदगी की पहचान है।
1: अच्छा जी, और
0: सफाई में जन भागीदारी जरूरी है, तभी टूरिज्म बढ़ेगा और शहर और खूबसूरत लगेगा।
1: समझ गया, नए भारत की नई तस्वीर, स्वच्छ शहर। डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू की तरफ से जनहित में जारी।
2: ए आकाशवाणी जम्मू है, बडलै खबरें च तुंदा स्वागत। खास खास खबरें कन्नै मैं नरेश शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह हुंदा आखना है जे भारत दे समूलचे बन्ने पर सुरक्षा व्यवस्था की निग्गर बनाने लई बीएसएफ दी भूमिका दा विस्तार कीता जाग। जम्मू च बन्ने कोल रौहने वाले बसनीकें अंतरराष्ट्रीय सीमा कोल 15 किलोमीटर दे दायरे च गैर कानूनी ढांचे की हटाने दे सरकार दे हाल दे फैसले दा स्वागत कीता है। कई डेलीगेशन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे कन्नै मुलाकात की है, नौजवानों की भलाई बेहतरी, विकास ते ग्राएं की तरक्की बारे गलबात की गई है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और कुपवाड़ा च कब्जा रेखा कोल घुसपैठ रोकने वाले सरिस्ते का जायजा लेता है। जम्मू कश्मीर पहली बारी पीटीएफ इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइकवांडो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करग। श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम च अज्जै थमां इस प्रतियोगिता की शुरुआत होग। जम्मू च हल्की बूंदाबांदी होआ करदी है, बदल छाए दे न। मौसम आले महकमे ने अज समूलचे जम्मू कश्मीर च बरखा, गरजिया फंडा पौने, ऐन गड़े ते धूल भरोची की हवा चलने की पेशनगोई की है। खबरें दी तफसील कन्नै विजय बजाज।
3: शुक्रिया नरेश। गृहमंत्री अमित शाह होरें आखिया जे सरकार सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की और मती जिम्मेदारियां देने पर विचार करारदी है, तां जे ओ नमी उभरा करदी चुनौतियों का असरदार ढंग नै मुकाबला करी सके। गुजरात दे भुज च भारत पाकिस्तान बन्ने कश बड़े मते रणनीतिक महत्व आली दऊं नमी सरहदी चौकियों का उद्घाटन करने परैंत बीएसएफ कर्मियों कन्नै गलबात करदे होई श्री शाह होरें यह टिप्पणी कीती। उन्हें गलाया जे बीएसएफ की स्थापना के 60वें बरे च लैता गेदा यह फैसला बन्ने की सुरक्षा के बीएसएफ के विषय की पूरी चाली बदलिए रखी देगा।

0: ध्यानजोग ऐ जे पाकिस्तान ते बंगलादेश कन्नै लगदे भारत दे बन्ने दी राखी बीएसएफ आसेआ कीती जंदी ऐ। इस मौके पर बोलदे होई गृहमंत्री अमित शाह होरें आखेआ,
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: जम्मू च अंतर्राष्ट्रीय बन्ने दे नेड़े रवर दे बसनीकें बन्ने दे 15 किलोमीटर दे दायरे अंदर बनाए गेदे गैर कानूनी ढांचें गी हटाने दे गृहमंत्री अमित शाह हुंदे फैसले दा बड़ा मता स्वागत कीता ऐ। इस गैं दा मकसद बन्ने दी सुरक्षा गी तगड़ा बनाना ते गैर कानूनी गतिविधियें गी रोकना ऐ। साढ़े जिला संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब अरनिया, आर एस पुरा ते सुचेतगढ़ दे बसनीकें इस फैसले गी अपना पूरा पूरा समर्थन देने दा तैयार कीता ऐ। आकाशवाणी समाचार कन्नै इस बारे गल्ल करदे होई बन्ने आले किश बसनीकें आखिया,
2: अगर गलत तरीके से किसी ने अपना है मकान बनाया है या अपनी प्रॉपर्टी जो इकट्ठा कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ साथ जो है ये बड़े मगरमच्छों पे भी कार्रवाई हो, नशीले पदार्थों की तरफ जा रहे हैं जिससे समाज को और खासकर जो नौजवान पीढ़ी है इसको जो नुकसान पहुंच रहा है ये ठीक हो सकता है।
3: ड्रग्स का मामला है जो ये बहुत बड़ा मामला है, तो जो आने वाले जनरेशन है उन पर सुधार होगा। हम तो चाहते हैं कि ये कार्रवाई पूरे इंडिया में हो ताकि कहीं से भी कोई भी चीज ना आ जाए।
0: कई सारे डेलीगेशन ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हुंदे ने मिलिए बख बख चाली दे मामले उंदे अग्गे रखे जिंदे च नौजवानें दे कल्याण, तरक्की बाधे ते ग्रामीण विकास कन्नै जुड़े दे मामले मुख तौर पर शामल हे। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन दे इक डेलीगेशन ने अपने प्रधान नासिर अली खान हुंदी अगुवाई च एलजी हुंदे ने मिलिए उनेंगी आउंदे राष्ट्रीय खेड उत्सव 2026 बारे जानकारी दित्ती जिहदा विशे सार है नशे दे खिलाफ नौजवान। इस आयोजन च देसै दे 8 राज्यें सने नेपाल थमां भी 2 टीमें दे हिस्सा लैने दी मेद ऐ ते इहदा मकसद खेडें ते नौजवानें दी शमूलियत दे राहें इक सेहतमंद ते नशा मुक्त समाज दे सनेह गी बढ़ावा देना ऐ। तोआईं कांग्रेस दे वरिष्ठ नेता सुरिंदर सिंह चन्नी होरें भी एलजी हुंदे नै मिलियै त्राल दे तरक्कियाती मामलें ते मकामी नौजवानें लई रोजगार दे मौकें पर लोह पाई। नाबार्ड दे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गोवर्धन सिंह रावत होरें भी श्री सिन्हा हुंदे नै मलाटी करियै ग्रामीण विकास आले मामले पर चर्चा कीती। सेना दी उत्तरी कमान दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा होरें कश्मीर घाटी च नियंत्रण रेखा कोल घुसपैठ रोकने सरबंधी ग्रिड ते बलें दी संचालन सरबंधी तैयारियें दा जायजा लैता ऐ। उनें कुपवाड़ा सैक्टर च कब्जा रेखा कोल तैनात यूनिटें दा दौरा लाया। अपने दौरे दौरान कमांडर होरें कब्जा रेखा कोल बिजन माहनू आली बाई प्रणाली यूएएस गी एकीकृत करने लई इलाके दी परिस्थितियें साबै कामयाबी कन्नै लागू कीते गेदे नवाचारें गी दिक्खिया। उनें चुनौती आले हालात च कम्म करने आले फौजियें दी बहादरी, दलेरी ते समर्पण दी तारीफ कीती। औंदी श्री अमरनाथ जी दी यात्रा दे मद्देनज़र जम्मू दे एसएसपी जोगिंदर सिंह होरें कल भगवती नगर आधार शिविर दा दौरा लाइयै सुरक्षा ते साज समान मतलक बंदोबस्तें दा जायजा लैता। उनें आधार शिविर दी सुरक्षा लई तैनात अधिकारियें ते जवानें कन्नै गल्लबात भी कीती। सीआरपीएफ ते सिविल प्रशासन दे प्रतिनिधियें भी जायजा बैठका च हिस्सा लैता। इस मौके पर सुरक्षा रणनीति, भीड़ दे प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण, निगरानी ते एमरजेंसी जनेह हालात कन्नै निबड़ने सरबंधी तैयारियें पर मुक्ख करी ध्यान केंद्रित कीता गेआ। एसएसपी होरें अधिकारियें गी निर्देश दित्ते जे ओह बंदोबस्तें गी बेल्लै सिर सबूरा करोआना यकीनी बनान। एह खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते डीटीएच पर भी सुनी सकदे हो। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुनारदे हो। हुन बाकी दियें खबरें कन्नै नरेश शर्मा।
4: श्रीनगर दे शेरे कश्मीर इंडोर स्टेडियम च अज्जै थमां पीटीएफ इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइकवांडो चैंपियनशिप 2026 दी शुरुआत होग। जम्मू कश्मीर पहली बारी इस प्रतियोगिता दी मेजबानी करा करदा ऐ। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कौंसल दी दिक्खरिक च एह अंतर्राश्ट्री प्रतियोगिता 2 जून तोड़ी चलग। समूलचे मुल्खे ते विदेशे समां ताइकवांडो खडारी इक मंच पर किट्ठे होइयै अपना प्रदर्शन दसगन। स्पोर्ट्स कौंसल दा आखना है जे एह छड़ा खेड मुकाबला गै नहीं है सगुआं नशा मुक्त जीवन शैली की बढ़ावा देने का एक मंच भी है। उधमपुर जिला प्रशासन ने नशा मुक्त भारत अभियान तहत कल रिवायत पैलेस च एक संगीत प्रोग्राम उधमपुर गाट टैलेंट के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया। उधमपुर रियासी रेंज के DIG शिव कुमार शर्मा और इस मौके पर मुख परौने हैं। इस प्रोग्राम च जिले के नौजवान ने बड़े उत्साह कन्ने हिस्सा लेता। कार्यक्रम का मकसद रचनात्मक गतिविधियों राय नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना है। इस मौके पर बोलते हुए उधमपुर रियासी रेंज के DIG शिव कुमार शर्मा और आख्या जे
5: बच्चों का जो टैलेंट म्यूजिक के थ्रू देखने को मिला उसमें उधमपुर के बच्चे जो है वो किसी नेशनल लेवल के म्यूजिशियन से कम नहीं है और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद ही लिखा है, खुद ही गाया है और खुद ही उसको कंपोज किया है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है उधमपुर के टैलेंट को लेकर। और साथ साथ में बच्चों ने जो गाने के साथ साथ जो नशा मुक्ति के ऊपर जो मैसेज दिया है ये बड़ा सराहनीय है। और उधमपुर के सभी गणमान्य जो यहाँ पर बैठे हैं और सभी एक मैसेज दे रहे हैं कि आइए हम उधमपुर को नशा मुक्त बनाएं और योगदान दें, हम अपनी जो युवा पीढ़ी को बचाएं।
4: जम्मू च अज मौसम बदलोखड़ा बनोए दा है ते कई सारी थारें पर ओली बरखा बरने करी लोकें गी गर्मी शा राहत हासिल हुई है। मौसम विभाग दे श्रीनगर केंद्र ने जम्मू कश्मीर च अज बरखा गरज चमक ऐन गड़ा पौने ते कई थारें पर आंधी झक्खड़ दी भविखबानी की है। उवा 31 मई थमां 3 जून तोड़ी मौसम खुश्क रोग ते 4 ते 5 जून गी फी बरखा बरी सकती है। मती जानकारी कन्ने मौसम विभाग दे डायरेक्टर मुख्तार अहमद।
6: अभी जैसे एक्सपेक्टेड था ऑलरेडी कि टिल आफ्टरनून मौसम ठीक रहेगा, फिर आफ्टरनून के बाद कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा गस्टी विंड्स आ रहे हैं, थंडर शावर एक्टिविटी और हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है। गस्टी विंड्स भी चलने के चांस हैं खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी। और कल भी जो है मौसम खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर क्लीमेंट वेदर की पॉसिबिलिटी है, गस्टी विंड्स हेल स्टॉर्म और थंडर लाइटनिंग के पूरे चांस हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और यहाँ कुछ एक डिस्ट्रिक्ट वैली के अंदर भी जो है देखे जा सकते हैं।
4: जम्मू कश्मीर दे साइबर अपराध विभाग ने बसनीकें गी बदा करदे ऑनलाइन धोखाधड़ी दे खतरे खिलाफ सोगे सतर्क रोने दी गुजारिश की है। विभाग ने लोकें गी फर्जी फोन कॉल, OTP स्कैम, संदिग्ध लिंक ते शुबे आली ऑनलाइन गुजारिशें बारे खबरदार किया है। लोकें गी आख्या गया है जे ओ कुसै अनजान नंबर थमां आने वाले लिंक पर क्लिक नहीं करन ते साइबर अपराध दी जानकारी 1930 नंबर जां राष्ट्र साइबर अपराध पोर्टल पर तुरत करन।
0: अखीरै च खास खास खबरां इक बारी परतियै। गृहमंत्री अमित शाह हुंदा आखना है जे भारत दे समूलचे बन्ने पर सुरक्षा व्यवस्था गी निग्गर बनाने लई BSF दी भूमिका दा विस्तार कीता जाग। जम्मू च बन्ने कोल रौह्ने आले बसनीकें अंतर्राष्ट्रीय सीमा काश 15 किलोमीटर दे दायरे अंदर गैर कानूनी ढांचें गी हटाने दे सरकार दे हाल दे फैसले दा स्वागत कीता है। केईं डेलीगेशनें लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे नै मलाटी कीती है। नौजवानें दी भलाई बेहतरी, विकास ते ग्राएं दी तरक्की बारे गल्लबात कीती गई। उत्तरी सेना दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा होरें कुपवाड़ा च कब्जा रेखा कोल घुसपैठ रोकने आले सरिस्ते दा जायजा लैता है। जम्मू कश्मीर पहली बारी PTF इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइकवांडो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करग। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंडोर स्टेडियम च अज्जै थमां इस प्रतियोगिता की शुरुआत होग। एदे कन्ने गै खबरें दा ए बुलेटिन समाप्त होगा।
7: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भदरवा FM 101 MHz की फ्रीक्वेंसी पर। सामीन, सुबह के 9:31 हुए हैं। आप समाप्त कीजिए कश्मीरी मौसीकी। आगाज़ में समाप्त कीजिए एजाज अहमद की आवाज़ में सागर सहराई का कलाम।

स्वामी नबी आप सुन रहे थे अल्लाह रखा की आवाज़ में वफा भदरवाही का कलाम। स्वामी कश्मीरी मौसीकी में आज बस इतना ही। FM 101 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर हम आकाशवाणी भदरवा से आपसे मुखातिब हैं। स्वामी सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर में आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती सर्विस के प्रोग्राम रिले किए जाएंगे। रिले का ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थपरता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वही छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा? हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहाँ क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए,

कमला यानी दोनों की मां रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूं। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहां यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थीं। सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का, कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित, माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी। उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

0: पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
1: बहुत

0: दम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्म दिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खय्याम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थे धन्य जवानी।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी,
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है। तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या बड़े जानवर वगैरह, इनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते
3: हैं उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे। आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
2: में, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
3: इवन सिटी में भी,
2: सिटी में
3: जो ड्यूरिंग द मानसून सीजन चूहे गाड़ी के जो
2: वायर कुतर जाते हैं,
3: तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मारी डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
2: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
3: बाकी
2: कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू। तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
3: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू

0: तंबाकू में 7,000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं,
1: ओ, सात
0: रसायन,
1: हजार
0: 7,000।
1: रसायन ओ
0: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग अब बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है,
1: जी
0: ब्लड प्रेशर बढ़ता है,
1: हाँ
0: हार्ट अटैक आ
1: हाँ
0: सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक
1: जी
0: हो जाते हैं, और
1: ओहो
0: तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से टीबी शरीर की बीमारियां होती है, और
1: ओ
0: सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर,
1: कैंसर
0: पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज जो कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और
1: जी
0: उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज़ को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया, और
1: तंबाकू
0: हमने
1: मुक्त बेस्ट
0: बेस्ट
1: अच्छा
0: और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए,
1: जी
0: तो
1: जी
0: मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5,000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
1: वाह
0: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे,
1: अच्छा
0: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपया का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। वो
1: ओहो
0: जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके
1: जी
0: ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से
1: जी
0: ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया, और इसके
1: अच्छा
0: वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
1: जी
0: जो डेथ वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे इधर कम हो गए। तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार बीमार कम पड़ रहे हैं,
1: जी
0: तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नोलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
1: क्या बात है
0: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
1: चलाए जाएं
0: चलाया जाए जो
1: क्या बात
0: लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े
1: निश्चित
0: हमारी।
1: सभी आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है अभियान चला रहे हैं आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं।
0: यस थैंक यू
1: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है
0: यस
1: और काफी उपलब्धियां रही इस
0: यस
1: अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू?
0: यस
1: क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसी होती है और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि वो फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं?
0: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है,
1: जी
0: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
1: अच्छा
0: कलीग खा रहे हैं, ले लेना ले
1: अच्छा
0: लेना, तो छोटी
1: ओहो
0: छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
1: जी
0: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
1: जी
0: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो केमिकल का नाम है डोपामिन,
1: ओके
0: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी
1: हाँ
0: बोलते हैं,
1: जी
0: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस फ्री महसूस फील करते हैं,
1: हाँ हाँ
0: उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको,
1: ओ
0: और किक के वजह से
1: हाँ
0: लोग ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स ये
1: हाँ
0: किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है,
1: अच्छा
0: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है।
1: अच्छा
0: उसको कहते हैं कि निकोटिन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स
1: हाँ
0: वो जो है
1: हाँ
0: वो रजिस्टर हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
1: यानी
0: और
1: पहले 1 ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी
0: हाँ
1: वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं
0: नहीं
1: मिलती है
0: मिलती है
1: और
0: आगे
1: फिर वो
0: जाके
1: मात्रा बढ़ती जाती है।
0: मरते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है, और पेशेंट
1: ओहो
0: उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरे डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, और देन वो बीमारियां शुरू होती
1: अच्छा फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है वो
0: यस
1: बीमारियों
0: बहुत
1: की।
0: बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर, कैंसर ठीक है होता है, 100%
1: हाँ
0: होता है
1: हाँ
0: वो, लेकिन उसको टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और कोई वो नोटिस नहीं करता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है, देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस उसके भी, जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है और उसके वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब ये अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन या कैल्शियम मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
0: ये
1: साइड देखा गया है कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते,
0: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है, तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और ऐसे लोग
1: डेंसिटी कम हो जाती
0: है, बोन डेंसिटी कम हो जाए, तो ऐसे ऐसे जो तम्बाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तम्बाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है इम्यूनिटी बोलते हैं
1: जी,
0: वो कम हो जाती है और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते, तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
1: जी,
0: और ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट ये कैंसर की बीमारी
1: जी, जी।
0: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में
1: जी
0: तंबाकू की वजह से होने वाले
1: कैंसर के
0: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
1: ओहो।
0: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है, तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है,
1: ये बहुत दर्दनाक
0: दर्दनाक चीज है,
1: मगर तो सत्य है,
0: लेकिन ये सत्य है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
1: हाँ।
0: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है
1: जी, जी, जी। हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह,
0: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
1: जी जी,
0: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में
1: हाँ।
0: दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है, वो है एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
1: अच्छा,
0: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
1: ओ, अच्छा।
0: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है
1: हाँ,
0: कि तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखे तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं, पहले दो साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारे जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन
1: जी, जी,
0: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन को फंक्शन को ये तंबाकू अल्टर करता है।
1: अच्छा,
0: और बहुत सारे रीजंस है और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
1: अच्छा।
0: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगोगे
1: जी,
0: तो उसके
1: जी,
0: जो पांच प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन।
1: अच्छा,
0: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
1: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
1: इसकी रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है,
0: यस, हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
1: जी जी जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे, मगर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे,
0: यस,
1: तो हमें दोनों बातें बताइए, छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले।
0: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जब तंबाकू अगर सपोज वो सिर्फ हर एक घंटे में खाता है या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है।
1: अच्छा।
0: उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है, तो जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है।
1: अच्छा,
0: वो बहुत जरूरी है
1: बहुत
0: हार्ट
1: जरूरी
0: हेल्थ
1: है,
0: के लिए,
1: बेशक बहुत
0: हृदय
1: जरूरी है।
0: की स्वास्थ्य के लिए, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है,
1: हाँ
0: तो वो नॉर्मल रहने लगती है।
1: जी
0: देन उसके बाद

0: ब्लड प्रेशर जो, इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं
1: हाँ
0: तब हम उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज़्यादा ही दिखाने वाला है।
1: अच्छा
0: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो
1: हाँ
0: बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह,
0: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता हो तो छोटा का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
1: कम हो
0: हैं।
1: जाती है। जी।
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो
1: वो
0: इम्प्रूव हो
1: सुधरने
0: जाती
1: लगती
0: है,
1: है। हाँ
0: हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं।
1: वाह,
0: देन आगे जाके सोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है हाँ कैंसर, उसकी भी
1: जी
0: रिस्क कम हो
1: उसके
0: जाती
1: रिस्क कम
0: है।
1: हो जाते हैं। हाँ
0: देन डायबिटीज़ में हमारे पास लोग हैं जिन्हें
1: जी
0: तंबाकू छोड़ दी है
1: हाँ
0: उनकी डायबिटीज़ की गोले भी बन हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अब इसकी।
1: अच्छा,
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट हैं
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: तंबाकू की लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज़ की गोलियां भी बंद हो गई है।
1: क्या बात
0: तो ये सब उसके फायदे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे हैं छोड़ने के बाद।
1: जी बिल्कुल।
0: तब यस ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7,000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन,
1: जी
0: और
1: जी
0: निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूं तो कल 4 बार
1: हाँ
0: खाऊंगा, तीन तीन,
1: हाँ
0: तो ऐसा कभी नहीं होता। उसको झटके से ही छोड़ना है
1: अच्छा
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रोल सिम्टम 100% महसूस होएगा।
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता
0: यस
1: है।
0: वो महसूस होगा ही,
1: हाँ
0: वो जो विड्रोल सिम्टम जैसे कि वो वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, पर्टिकुलर
1: अच्छा
0: डाइवर कंडर को ये बहुत होता था हमारे
1: हाँ
0: पास।
1: हाँ हाँ
0: तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रोल सिम्टम रहता है,
1: अच्छा
0: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को
1: नॉर्मल हो
0: एडजस्ट करने
1: जाता है।
0: लगती है,
1: जी,
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ
0: वो
1: जाता
0: आ
1: है
0: जाता है बस
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: पहले
1: था।
0: था वैसा।
1: वाह,
0: बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता
1: देखिए
0: नहीं
1: ये
0: है।
1: कितनी जरूरी बात है।
0: यस
1: हमारे श्रोताओं को, उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें
0: झटके से छोड़ना है
1: झटके से एक
0: बस
1: साथ,
0: बस
1: और उसके बाद तंबाकू
0: 2 दिन से
1: के
0: दो
1: बारे में सोचना ही
0: हफ्ते
1: नहीं। 2 हफ्ते,
0: बस
1: ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते
0: दो ज्यादा से ज्यादा दो
1: ये
0: हफ्ते
1: लक्षण रहेंगे,
0: बस विड्रोल सिम्टम
1: विड्रॉल
0: ज्यादा।
1: सिम्टम्स,
0: यस
1: और उसके बाद वो सामान्य स्थिति
0: सामान्य
1: में
0: हो
1: आ जाए।
0: जाएगा,
1: क्या
0: अपनी
1: बात
0: बॉडी
1: है,
0: अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह। तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कॉप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं।
0: यस
1: ये क्या होता है, क्या कॉप्टा एक्ट क्या है?
0: सी जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है,
1: जी।
0: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको
1: अच्छा
0: कोटपा एक्ट बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट,
1: अच्छा कंजम्पशन ऑफ
0: ऑफ
1: टोबैको
0: टोबैको
1: प्रोडक्ट
0: प्रोडक्ट
1: एक्ट,
0: एक्ट,
1: कॉटपा एक्ट।
0: कोटपा एक्ट।
1: अच्छा
0: उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ
1: प्रतिबंधित है।
0: पनिशेबल ऑफेंस।
1: जी।
0: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
1: जी
0: जो होती है वो
1: हाँ
0: भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते हैं वो ना खाए
1: जी।
0: और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग।
1: जी
0: उसका फायदा हुआ है, कम हुई है,
1: हाँ
0: जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है,
1: जी
0: लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी ऐड बोलते हैं उसको
1: अच्छा
0: भी बैंड किया है कि
1: हाँ
0: कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स
1: हाँ
0: तंबाकू का जो प्रोडक्ट था
1: हाँ
0: पहले
1: जी
0: उसको
1: जी
0: खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहते
1: होता तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया
0: अलग,
1: नाम और नया रूप दे देते हैं।
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट वो अलग कर देते हैं
1: अच्छा
0: कि
1: अच्छा
0: तब जो पहले वो नाम तंबाकू
1: हाँ
0: के वजह से के लिए यूज होता था अभी वो
1: हाँ
0: तंबाकू की वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग
1: अच्छा अच्छा
0: खाते
1: अच्छा
0: पीते हैं उसके लिए, तो सरोगेट
1: हाँ
0: ऐड बोलते हैं उसको भी बैन किया है।
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसके वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी
1: जी
0: कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं, मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते हैं, मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में
0: यस
1: जाता है।
0: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, वो इनहेलेशन आ गया है,
1: हाँ,
0: वो भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन
1: ई
0: तरीका
1: सिगरेट
0: है, ई
1: करते हैं, ई
0: सिगरेट आ गई
1: सिगरेट,
0: है,
1: हाँ
0: उसको भी अलाउड नहीं है, वो भी हानिकारक है,
1: जी जी जी
0: उसमें हानिकारक वो
1: हाँ हाँ तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे
0: भी
1: प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी
0: उसे
1: उतना ही धोखा है,
0: यस यस
1: उतना ही रिस्क है।
0: यस यस अमेरिका
1: जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता, वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए, तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा
0: हाँ,
1: तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया,
0: और दिक्कत
1: तो
0: होती
1: तुरंत उल्टियां होने लगती
0: यस यस यस। और बहुत बार तो
1: हैं।
0: जैसे कि
1: और लेकिन जिनको लत लगती है उनको
0: उनको
1: पहली बार ऐसा
0: कुछ
1: नहीं होता।
0: उनको नहीं होता पाया। ये जो आपने बताया
1: हाँ
0: वो सबसे
1: हाँ
0: ज्यादा अफेक्ट करता है पेसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको, कि
1: हाँ
0: अगर हस्बैंड स्मोक करता है,
1: जी जी
0: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है,
1: हाँ
0: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना,
1: बिल्कुल
0: वो धुआं
1: हाँ
0: जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं,
1: अच्छा
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पेसिव स्मोकिंग की वजह से इट हैज बीन एस्टेब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है,
1: जी
0: जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है
1: जी
0: और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है,
1: जी
0: जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है उसको भी खतरा है,
1: उस पर भी
0: तो
1: असर हो रहा है।
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको, तो
1: जी।
0: द पेसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ
0: ये सब चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते निग्लेक्ट करते, आई
1: हाँ
0: डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
1: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन्स है, उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है।
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो,
1: अच्छा,
0: आई डोंट थिंक सो, आई
1: या कुछ
0: डोंट
1: लोगों ने
0: थिंक।
1: कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे,
0: नहीं,
1: आपकी
0: ये
1: पाचन
0: सब
1: संस्था अच्छी।
0: मिथ्स है, मिथ्स है,
1: अच्छा,
0: मिथ्स है सर।
1: ऐसा कुछ भी
0: सी
1: नहीं,
0: तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी,
1: बस
0: बस
1: वो।
0: उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके, बस
1: हाँ
0: बस।
1: हाँ
0: जैसे मैं शुरुआत में बताया,
1: जी
0: छोटा जीव है तो जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा,
1: हाँ, मरेगा जरूर।
0: मरेगा जरूर,
1: ओह,
0: उससे
1: तो इस कठोर सत्य
0: दूर
1: को, इस कटु सत्य को जो है
0: जाना,
1: हमें जान लेना चाहिए,
0: एक्सेप्ट करना है हमें।
1: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है,
0: यस, उसको हमने
1: ये
0: मैजिक,
1: कैसे हुआ, कब
0: यस
1: हुआ
0: या
1: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
0: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स या
1: अच्छा,
0: मैजिक
1: मैजिक
0: चूरन,
1: मिक्स, जादुई चूरन,
0: जादुई चूरन।
1: वाह।
0: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है,
1: अच्छा।
0: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरन मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोलते हैं जो महाराष्ट्र में मिलती है, तो
1: हाँ
0: वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया। तो
1: अच्छा
0: हमने वो बेस को ध्यान में रखते
1: हाँ
0: हमने चूर्ण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोभ
1: वाह
0: और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे
1: हाँ
0: तो हूबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा,
1: अच्छा
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें,
1: अच्छा
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू
1: हाँ
0: को घिस रहे
1: जो
0: हो,
1: लोग तंबाकू मल के खाते हैं।
0: तो उसको कलर भी वैसा ही है उसका
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ
0: उसमें साइंस ऐसा है कि
1: जी
0: जो दालचीनी है
1: हाँ
0: इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटिन के विड्रोल को और कम करती है,
1: अरे वाह,
0: तो साइंस भी है उसके पीछे।
1: क्या बात है,
0: तो इसके वजह से हमने चूर्ण बनाया, उसका नाम रखा मैजिक मिक्स,
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स।
1: वाह वाह वाह।
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है, और
1: हाँ
0: वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में,
1: अच्छा
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है और
1: अच्छा
0: उसको यूज करे, और अपनी जब भी तलब लगे
1: हाँ,
0: तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं
0: नो, इट
1: है,
0: इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट,
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे के
0: सबके
1: लिए
0: फायदे
1: है।
0: के लिए हमने उस खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको,
1: अच्छा हाँ,
0: आपके लिए ही है, आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है।
0: खुद बनाइए घर पे और खाइए
1: तो ये
0: उसको,
1: फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके
0: ये
1: बनाया जा सकता
0: बना।
1: है।
0: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है,
1: हाँ,
0: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है, क्योंकि वो
1: हाँ
0: निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है,
1: बिल्कुल
0: सब
1: बिल्कुल,
0: ये अपने गर्म मसाले वो फायदेकारक ही हमारे बॉडी को।
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए
0: यस
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है
0: हाँ
1: उसे एक बार दोहराते हैं।
0: हाँ
1: इसमें क्या-क्या चीजें आपने डाली हैं?
0: दालचीनी,
1: दालचीनी,
0: अजवाइन,
1: अजवाइन,
0: जीरा,
1: जीरा,
0: बड़ी सोप, सोप
1: सौंफ,
0: सोप
1: सौंफ, हाँ,
0: और एकाध
1: लौंग,
0: लौंग,
1: अच्छा,
0: उसको मिक्स करके
1: लौंग तो एक ही ले
0: एक
1: रहे हैं
0: ही
1: मगर
0: लेना,
1: बाकी जितनी
0: बाकी
1: चीजें
0: इक्वल
1: हैं
0: क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी।
0: इक्वल वन,
1: अच्छा
0: उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में। मिक्सचर होगा वो बहुत तम्बाकू सरीका ही लगेगा, लेकिन
1: अच्छा
0: उसमें तम्बाकू नहीं है।
1: हाँ हाँ
0: चूने की जगह पे
1: हाँ
0: राइस पाउडर यूज करने का।

0: भी घर
1: चावल का
0: चावल
1: आटा।
0: चावल का आटा।
1: अच्छा,
0: तो ये आप करके उसको सेम
1: तो
0: कनिस्टर में
1: जिसे
0: यूज
1: तंबाकू
0: करें
1: मलने की आदत है
0: वो ऐसे ही
1: उसे
0: मल
1: हाथ में लेके मल के जो है अपना
0: के
1: पूरा एक्शन कंप्लीट
0: पूरा
1: करे,
0: एक्शन
1: और उसके
0: कंप्लीट
1: बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर के लिए,
0: गया दबा लो
1: उसका जो जूस निकलेगा
0: वो घास
1: वो आपके
0: भी
1: शरीर के लिए फायदेमंद है। वाह
0: फायदेकारक
1: वाह
0: है,
1: वाह,
0: उसको थूकना भी
1: क्या बात
0: नहीं
1: है। बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में,
0: है।
1: इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी,
0: वो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो
1: जी
0: आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इम्प्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि
0: जी
1: मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था और
0: हाँ
1: वो कृषि बैकग्राउंड से था,
0: हाँ
1: उसके घर वाले जो है खेती करते थे, तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से, और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा। तो ये कितना बड़ा मिथ है आप जरा
0: मिथ्स,
1: बताइए,
0: मिथ वो गल मिथ्स ही है, सब सब मिथ्स ही है,
1: बहुत
0: सब
1: बड़ी
0: बहुत
1: गलतफहमी है।
0: गलतफहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है वो। जैसे हमने देखे हैं, आप किसी को अगर अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए, बस खाली
1: हाँ
0: समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी,
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीड से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए,
1: जी
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए, हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कुछ भी कोई भी
1: या
0: फॉर्म,
1: तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर नसवार होती
0: नसवाली
1: है
0: है, स्मोकिंग
1: या
0: है,
1: स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार का
1: किसी भी
0: तंबाकू,
1: तरह से,
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बात है। आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी,
0: थैंक यू,
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
0: तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य, उसकी शारीरिक मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूंगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।
2: देख।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प

0: पुत्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग, इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजेन की आवाजों में, समीर के बोल, संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओ माई गॉड, इस फिल्म का गाना है, कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
6: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफ़र कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूँ, ये सोचते हुए कि ऐ दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूं अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आ पासा। तो उसने कहा आला बर्फी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा, इश्के दी चाशनी का बोलबाला रहेगा। इसके बाद मन सोचने लगा हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो, हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफ़र में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं, हमारा तो दिन सुबह से ही हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप कभी छांव, कभी तेज़ हवा हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्ज़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो, इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फ़ायदे हैं या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल सके, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि आलू के पकोड़े खा लिए जाए या आलू से बनी हुई ऐसे ही किसी नाश्ते की हमें याद आ जाती है। वैसे सबका सबकी पसंद जो है वो अपनी अपनी अलग होती है। तो आज

अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम थोड़ी आलू की बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी गीत हम सुनेंगे। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना है।

उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीज़ों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फ़ी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में

नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मज़ा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत।

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे, भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए, वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है। कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज

आलू की टिक्की बना रही हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही है तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं है, ये एक एहसास है, ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब संयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज़्यादा आता है, कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज पर आ गया है? बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है। मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, ज़रूर वहाँ के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूँगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मज़ा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है। चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है। एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं। और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूप होता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग। जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और कभी-कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ, क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज़्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे, और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पति देव को बहुत पसंद है, मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में, जिस

आग तपती उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है। और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है। सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है। मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है। चाहे जितनी भी गर्मी हो पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज होती है और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज है, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

नहीं प्यारे। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा खाया, उसे कटक घूमने आने का मजा आया, विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है ये। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है, जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद, पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है कि इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज़ है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

बड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सब्जी या कुछ चीज़ बना के ले, वो आलू की होती है। आलू की सब्जी और पूरियाँ, या फिर मसाले वाली पूरियाँ, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीज़ें हम बना करके ले जाते हैं। या यहाँ तक कि हम जब सफ़र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा जो सब्जी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्जी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने और आज तक आलू बैंगन की सब्जी सबसे ज़्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एक साथी

लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूंथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं, तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो, जैसे बर्फ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है। या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फ़ी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फ़ी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज़ किसकी है।

मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्यौहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है आलू। समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडार बारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवाटे और दही का रायता बनाकर खिलाया था। आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज़्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मज़ा हमें तो नहीं आता है। हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हों। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है। पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले। बुआई से पहले बीजों को फफूंद नाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती। चलिए, अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीज़ें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है। और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे, वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए, अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद ज़रूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हों, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है। आशा।

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है।

आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले, स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी की बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाज़ों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंदकुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्त।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन

0: 3 बजे
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फ़तेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी।
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूं। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के दो तीन अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी। गुड मॉर्निंग।
2: कौवी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
1: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
1: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मेरी पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
1: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
1: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
3: इसमें हर्ज ही क्या है, सच तो यही है ना?
1: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
1: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊं?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: इधर आओ ना
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।

0: बेनी एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
1: बताओ। दोनों।
0: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
1: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
1: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
0: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ।
3: तुम बेनी हो ना?
1: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
3: हाँ मैं लॉरेंस हूँ।
1: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
3: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
1: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका
3: लॉरेंस। और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
1: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
3: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
3: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
3: Exactly.
1: गजब की यादाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
3: नमस्ते। नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
0: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
3: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?

0: चेस्ट में पेन है, दिल की तरफ भी पेन है, सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते, बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा, मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा तुम?
1: आप यहाँ?
0: हाँ मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ, सीने में और दिल में दर्द है।
1: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
1: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
1: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
1: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
1: सोचती नहीं बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
1: हाँ आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
1: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
1: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
1: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। टेरर?
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है।
1: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो, मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
1: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
1: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
3: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
3: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था, तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो?

0: ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
2: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
2: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
2: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा, इसी हफ्ते में।
2: डॉक्टर,
3: हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
2: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
2: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
3: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
2: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
3: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देख कर दुखी हो जाएंगे। अल्लो बेनी आ रहे हैं।
4: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
5: ओह डॉक्टर,
4: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
0: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया है?
4: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
0: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
4: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
0: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
4: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
2: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
0: तुम्हारे लिए एक चीज है।
2: अच्छा, देखो तो।
0: लो देख लो।

0: चाहिए अब गाय को, और यहाँ
1: मेरी ओर से प्रेजेंट।
0: प्रेजेंट?
1: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
0: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
1: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
0: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
1: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा, तो फिर हंस दो। देखो, ये ऐसे ऐसे।
0: अरे, क्या क्या हुआ आपको?
1: डेजी,
0: यहाँ लेट आइए, लेट आइए ना। बेनी, बेनी, बेनी, डॉक्टर, डॉक्टर! कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गया।
2: Oh, no.
0: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
2: आखिर ये हुआ कैसे?
0: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी, और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे, मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
3: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
0: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
3: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
0: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
3: ना तेजी, ही सब

0: अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
1: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
2: अच्छा,
1: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
3: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
4: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
5: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
6: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
6: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
7: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
8: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
7: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: धन्य जवानी।

0: कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम
1: से बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: तक पूरे ना हो तेरे साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
2: हाँ बिल्कुल,
1: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
2: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
1: जी,
2: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
1: समझदारी,
2: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
1: हाँ।
2: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
1: हाँ।
2: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
1: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
2: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी।
1: हाँ।
2: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
1: अच्छा।
2: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
1: जी,
2: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विर्ज खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
1: यानी इस साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं,
2: कर रही हैं
1: और गुंजा
2: करती रहूंगी।
1: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
2: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
1: अच्छा।
2: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
1: जी,
2: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
1: अच्छा।
2: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
3: जी।
2: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
3: जी।
2: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
3: अरे वाह।
2: हाँ,
3: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री? आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
2: हाँ,
3: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
2: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
3: अच्छा।
2: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
3: जी,
2: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को।
3: हाँ।
2: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
3: अच्छा।
2: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
3: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
2: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
3: क्या
2: है ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस समय आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
3: उतनी बुलंद आवाज।
2: हाँ, बुलंद आवाज थी
3: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए
1: हाँ, मैंने
0: होंगे।
1: नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना,
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है जी।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा
1: जोगीरा
0: में, और हमने देखा बड़ा
1: में
0: अच्छा
1: मार
0: है।
1: खा के की हूं।
0: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता
1: नहीं,
0: दें
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी।
1: हमारे डांस डायरेक्टर,
0: जी
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ,
0: हाँ
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी,
0: अच्छा
1: तो मैं तो
0: हाँ
1: नहीं थी, तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम,
0: जी
1: और घूम के आना था,
0: जी
1: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये, तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो बोलते हैं 3 4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में। एकदम ठीक कर दिया मैंने
0: अच्छा, एक
1: आपको।
0: डंडे में डांस हो
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: गया। लाठी के भूत।
1: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक
1: और
0: पहुंचाया।
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी,
0: हाँ
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई, और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं, और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला,
1: हाँ,
0: कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं, और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो
1: हाँ,
0: किरदार किया कैसे आपने?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी, अगर वो सीखी होती तो मैं बंद जाती किसी भी चीज में,
0: अच्छा
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो,
0: अच्छा
1: ये है ये फ्रेम है ये, सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो
0: डीओपी
1: डीओपी,
0: वाला।
1: हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो बोलते सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ,
0: अच्छा
1: तो 2 3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है अच्छा, थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है
0: हाँ।
1: ऐसे, चल फ्रेम की बारी चली जाती थी,
0: जी
1: तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया, मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में। आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप
0: अच्छा
1: पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज़ है ही नहीं आपके अंदर,

0: सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा ले के। तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
1: जी, तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है।
0: हाँ
1: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल
1: अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो
0: हाँ
1: मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ ऐसा
1: एक
0: तो कुछ
1: ये
0: नहीं
1: ईगो
0: है।
1: भी सामान्यतः लोगों में
0: हाँ
1: होता है
0: होता
1: कि हमने
0: है।
1: किया है,
0: हाँ
1: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं कुछ तैयार
1: नेचुरली?
0: नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता
1: जी
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी।
1: जी
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ
1: जी
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ।
1: जी
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं
0: नहीं
1: करना ही
0: करना है।
1: एक्टिंग है।
0: हाँ तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ
1: हाँ
0: कि
1: जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
0: सुनाइए।
1: पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा ऐसा।
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो।
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं।
1: जी
0: तो कुछ दिल ने कहा, और ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत है।
0: खूबसूरत और
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल

0: गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ हैं। वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं। और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी
1: तो वो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो
0: हाँ
1: ह्यूमन
0: समझ
1: टच नहीं रह गया है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है,
0: जी
1: तो इसलिए मैंने कभी उन पे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा
0: जी
1: ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
0: जी
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नहीं नहीं
1: प्रोडक्शन में,
0: जी जी
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है, बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे।
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था,
0: अच्छा
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं,
0: जी
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी
0: चलिए
1: वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
0: आदतन
1: बैठने।
0: अनुसार आप लड़कियों से
1: हाँ
0: घिरी रहती
1: तो
0: थी
1: टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी।
0: जी
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
0: नहीं
1: हाँ
0: वैसे आप बहुत हॉट हैं, शॉल की
1: हाँ
0: जरूरत
1: नहीं।
0: है। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद।
1: हाँ
0: जी
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने,
0: जी
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी,
0: जी
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो
0: ओके
1: जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में,
0: जी
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे, आबिद रिजवी, मुझे
0: जी
1: बिल्कुल बेटी की
0: आबिद
1: तरह,
0: रिजवी जी
1: हाँ,
0: जी
1: तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल।
0: नीचे का जी
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो
0: वही सेम
1: उसमें
0: फिल्म।
1: हाँ सेम फिल्म
0: ओह
1: लेकिन आपको जो गुरु हैं उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूँगी, जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहाँ पे
0: जी बिल्कुल
1: साउथ में, सरगम ये सब उन्होंने ही बनाई।

0: तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा।
1: बोलती
0: उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: आंखें
0: हाँ तो इनको ऑन इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए,
1: जी
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना
1: जी
0: शायद,
1: जी
0: हाँ
1: जी उसके बाद ही थी
0: हाँ तो मस्ती में की बस,
1: जी
0: और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं, उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी,
1: अच्छा
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब,
1: जी जी
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है,
1: बहुत
0: देखे
1: अच्छी
0: हैं।
1: फिल्म जी
0: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
1: हाँ
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे,
1: जी
0: लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण।
1: जी
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है, स्थल।
1: अच्छा
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, ये ना सब मिल के काम कर रहे
1: मिल
0: हैं।
1: के काम कर रहे
0: हाँ
1: हैं, पारिवारिक तरीके
0: हाँ
1: से काम हो
0: हाँ
1: रहा है
0: फिर
1: जी
0: मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर वो, उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है
0: हाँ
1: तो आपको क्या अलग लगा पहले का और
0: मुझे
1: अब का?
0: ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा
0: हाँ क्योंकि ये
1: फ्रीडम
0: भी बोलते, हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये
1: जी
0: बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे कि
1: हाँ
0: ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी।
1: जी हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके
0: मेरे
1: जाएगा,
0: पति का नाम
1: आपकी
0: राजकुमारी
1: जिंदगी में
0: है।
1: ही राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए
0: अरे
1: थे?
0: वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया भाई, ये था कि फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम और मिलने आए, तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ, और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने।
1: जी
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उस लिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैं कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जा, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर,
1: हाँ
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। फिर
1: अच्छा
0: मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए थी लेकिन
0: हाँ
1: उसके साथ शादी नहीं करानी
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है,
1: हाँ
0: ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने फिर।
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी,

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं, यूपी की भोजपुरी फिल्म में, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो,
0: जी
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर
0: जी
1: थे,
0: जी जी
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए,
0: हाँ।
1: तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
0: जी
1: जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो,
0: जी
1: जो कि ब्लॉकबस्टर,
0: जी
1: आज
0: जी
1: भी
0: जी
1: ब्लॉकबस्टर
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
0: जी
1: गंगा जैसन पावन पिरितिया हमार, तो
0: अच्छा
1: उसमें मैंने काम किया,
0: जी
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको,
0: इतना
1: बहुत
0: लाइटली तो नहीं
1: बहुत
0: लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी,
0: जी जी
1: लेकिन
0: बहुत प्यारी है,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो
0: अच्छी फिल्म
1: हाँ
0: जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन, लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी या सीखने
1: बिल्कुल
0: में
1: भी
0: आपको?
1: नहीं। मैं बनारस में की पैदाइश हूँ। हाँ, मैं अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब आप वो चाट और लस्सी
1: वो
0: खाते पीते
1: खाते पीते
0: बड़ी
1: हाँ
0: हैं।
1: सीखी मैंने
0: अच्छा
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये
0: सरदार खड़े
1: हाँ,
0: हैं और
1: तो हमारा
0: भोजपुरी बोल रहे
1: पंजाबी
0: हैं।
1: एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
0: जी
1: हाँ ये काफ़ी फ़र्क है।
0: जी
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए, अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
0: अच्छा
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
1: देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
0: जी
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक
0: हाँ
1: वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी,
0: जी
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था

0: ऐसा
1: बहुत अच्छा।
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
0: हाँ इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहां पे
0: हाँ
1: उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: गाया जा
0: रवि
1: रहा
0: जी।
1: होगा।
0: हाँ
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
0: बहुत
1: समय?
0: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा अगर
1: जी बहुत खूबसूरत गीत है।
0: हाँ, और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था। और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
1: जी
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद?
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ
1: एक साथ,
0: बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो
1: बट
0: में।
1: जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहां पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओ
0: विराजमान होंगे।
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुनाए,
0: 30 गाने, 30 धुनें।
1: 30 गाने में, और सुना रही थी पसंद है नहीं है अच्छा, और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो
0: जी
1: बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो,
0: जी
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
0: शब्द भी
1: और
0: लिख
1: शब्द भी लिख देते थे,
0: लेते।
1: एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे बना
1: बत्तीस
0: के
1: होंगे
0: सुनाना
1: 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का, दादा कह
0: लगातार।
1: रहे नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो
0: और
1: उनसे
0: कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है,
1: हाँ, उसके
0: अद्भुत।
1: बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए
0: हाँ।
1: जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने कहा
1: हाँ
0: से? जी
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार,
0: जी और
1: दादू
0: जब
1: दादू
0: टूर
1: ने
0: करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे? जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
1: हाँ
0: आनंद ही अलग आता
1: हाँ
0: होगा
1: वो
0: देख
1: तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है,
0: के। अच्छा।
1: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई,
0: हाँ,
1: अल्लड़पन कहते ना कि
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई
1: हाँ ये
0: बचपन से।
1: बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो,
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार
1: दे
0: रहना,
1: हाँ
0: लगेगी तो
1: लगे
0: संभाल लेना।
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते
1: नहीं
0: फिरते?
1: नहीं बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी, तो ये
0: हाँ,
1: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
0: अच्छा।
1: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है मैं कर लूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह।
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी, तो इन
0: हाँ,
1: लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
0: एक
1: बोल
0: बार में
1: दिया
0: बोल दिया
1: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: यानी
1: तो
0: आपको
1: हाँ
0: मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा
1: हाँ
0: मिला, दोनों
1: मेरी
0: जगह बढ़िया।
1: सास

0: ससुर तो बहुत अच्छे थे,
1: जी
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें।
1: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है
0: नहीं
1: या?
0: नहीं मेरे बेटा तो बहुत दूर है,
1: अच्छा
0: उसको फेमस नहीं होना है, वो
1: जी
0: बिल्कुल ही अलग सोचता है। और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं,
1: जी
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
1: जी
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, उस
0: तो
1: समय वो चल
0: फिर
1: नहीं
0: वो
1: पाई।
0: उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब
0: तो
1: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
0: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत करो अपनी,
0: हाँ अपनी मेहनत करो।
1: ये बहुत अच्छी बात है, उनको
0: क्योंकि मैंने
1: अपना
0: अपने
1: समझ
0: लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो
1: जी।
0: बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
1: लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है। साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30,
1: जी
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ
0: अब देखते हैं क्या होता
1: जी बिल्कुल
0: है।
1: होगा, आपने कह दिया, सोच लिया, और
0: हाँ
1: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
0: हाँ ऐसा
1: हम मान
0: है,
1: के चलते हैं।
0: चलिए
1: बिल्कुल, ये
0: ठीक
1: जगह
0: है।
1: बड़ी
0: हाँ
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
0: हाँ
1: आए हैं।
0: हाँ
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर
0: हाँ
1: अभी आप तस्वीरें देखते हुए
0: हाँ
1: आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
0: अच्छी
1: यहाँ
0: आती
1: की।
0: है। हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं,
1: जी
0: कि ऐसा नहीं है कि मिड लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ।
1: ऊर्जा सकारात्मक
0: हाँ,
1: है।
0: वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ हुई कि
1: समझ
0: मुझे ऐसा
1: जाती हूँ
0: लगा
1: मैं।
0: कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और
1: क्या
0: फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
1: बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस
0: थैंक यू।
1: अच्छाई के बीच में, अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं, विविध भारती में आई हैं, तो कुछ गाने हम भी
0: मैं
1: सुन
0: एक
1: लें।
0: कोशिश करती हूँ, चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ।
1: आह
0: वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
1: जी
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज़ से सीखा है।
1: जी
0: उनका एक गाना गा देती हूँ,
1: जी

गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ के, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ के, बस एक निगाह

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो कि क्या उनके लिए बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता है।
1: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी
1: बचता भी
0: नहीं
1: नहीं है, और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं,
0: जी।
1: लेकिन सब इस कर पाएंगी जो आती हैं कभी कभी, वो कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें, 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप
0: हाँ
1: सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है,
0: हाँ
1: लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके,
0: अच्छा
1: और साड़ियां वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है, ये
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा, उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की, बहुत
0: अच्छा
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
0: अरे वाह
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहले।
0: जरूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा

0: मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी.
1: हाँ
0: सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको. आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए. नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी. अच्छा लगता है
1: अच्छा
0: विविध भारती में जब आप
1: बिल्कुल,
0: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है. तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम.
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज़ कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान.

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

ये आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 MHz पर समय शाम के 5 बजे हैं और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में भद्रवाही मौसिकी के साथ। प्रोग्राम के आगाज़ में आइए सुनते हैं पूरन मन्हास की आवाज़ में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे भद्रवाही मौसीकी। ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 MHz पर। समय 5:30 होने को है। आइए आप सुनते हैं किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम किसान वाणी।

0: एकदम कि इसे बदला है मैं भी लोग के पुण्य एंडे पर भी पोले
1: जी
0: उस
1: जी
0: लोर है ना और ने दसमा से एकदम कि तना टाइम मेरी कर पहले भी असन थला हर चीज़ रिजन अंत दे
1: जी जी
0: देतन और आस कोने की आस तना हो रही अगर सब्जी काल करें तो तन के सब्जी भी दी और बचे लगभग आधी के ज़्यादा सब्जी तने हो नज़र इस टाइम मार्केट में बेचतन
1: जी
0: और आस एकदम जाली तना सब्जी मार्केट में बेचतन तो तन कोने की रेट ज़्यादा तो सेम मिलते
1: सेम
0: तो
1: जी
0: अगर अजने वाले टाइम में असम की तो उसका भी सब्जी बोई असनका भी सब्जी बोई मार्केट में गाते हैं 4-5-10 रुपये असन किलो मिलते
1: जी
0: तो ऐसे कौन है कि ऐसे अगर पोली हाउस में करता हम तो ऐसा कौन है कि मार्केटिंग में भी फायदे होते हैं अभी काफ़ी बहुत है और तो सर इलावा से जो चाहते हम कि ऐसे अगर कोई भी कारोबार करना
1: जी
0: है तो तस कौन है कि ऐसे ऑर्गेनिक तरीके से कह रहे हैं अपने जिन तरह अगर ऐसे सब्जी कारोबार करना है पोली हाउस में करना तो तस कौन है कि ऐसे खाद देता
1: खा
0: देशी
1: दे ब्रो
0: गोबर खाद बनेता अगर अस करता हम तस्मा को ना कि सेहत भी तंदुरुस्त रहे जानवर अगर अस तटा घास वगैरह देता तो सीढ़ी भी तंदुरुस्त रहे तो असें को ना कि और इस मार्केटिंग में भी सब्जी वगैरह बेचता हम
1: जी
0: तो तसें भी कौन है कि मालरी भी सेहत तभी दुरुस्त रहा चे तो असें कौन है कि जोनों चाहते हम कि जब भी अपनी फसल
1: जी
0: लानी
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: अस उसका गल ना करम अस उडार की गल भी करम तो असें कौन है कि जब देशी गोबर खाद अस जब बनाई तो छड़म तो असें
1: त्याज
0: अपने
1: देखिए
0: उडार में छड़ लोड़े और तो असें कौन है कि इस किसान लान नजोर तो आख तो सेहत भी ठीक रहा चे और जमीनी में भी सेहत जमीनी भी ठीक जा
1: जी
0: रहा
1: मिर्जा
0: चे
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: असें कौन है अपने जो सब्जी वगैरह लानी है तो अस पोली हाउस में भी लेता या अगर पोली हाउस में कोने की अगर असें बड़े पैमाने
1: बड़े
0: पर
1: पे बड़े पे
0: करना है
1: जी
0: तो अस कोने की असें थाला वगैरह तैयार त्यार कर सकते हैं और अस उनका जाना उदाहरण साथी तो तड़ी कोने की अस खड्डे वगैरह
1: जी
0: बनाईता
1: बिल्कुल
0: पानी भी जो सोर्स बनाईता और अस तड़ी जो सब्जी लेता और अस टाइमली कोने की इस टाइम में अस सब्जी जो तैयार करता और मार्केटिंग में जैसे दे सकते तसें कोने की असन फायदों बहुत है और अस कोने की असन डिपार्टमेंट वन से भी रबतो रखना है कि जिस अस पोले हो सर गल करम तो पोले हो सर में भी असें
1: जी
0: कौन है कि या तो टोली बंद रखी छाड़ो तो असें भी कौन है कि सब्जी एकदम फुकई गए
1: जी
0: तो तेल असें डिपार्टमेंट से भी रबतो जो रखना और जल इस डिपार्टमेंट वाले से रबतो रखता हम तो डिपार्टमेंट वाले ने असं पूरी गल समझाते कि तो सब्जी लानी है और स्प्रे वगैरह भी अगर अच्छी सब्जी कोई खराब भी बचे तो कोई स्प्रे असें कदाली खानी है दिनेची अस नजोरता गलबात करते रहते और अस अपने प्रोग्राम को ना कि उन्नत किसान री भी अस गलबात सुनाता
1: जी
0: तज भी असें जो गलबात की हुई तथा की हुई असें डॉक्टर फियाज अहमदन जना परैरे रहने वाले जना इसे उन्नत किसान
1: जी
0: तजन
1: जी
0: सुनते मैंने सीखी हुई गलबात गलबात सुनने कर सुनते पहले संदेश
1: जी बिल्कुल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी में आज असन सिंह गलबात करीरा और फयाज सरन प्रोग्रेसिव फार्मर लिखो रे मैन उन्हें कोई है नहीं जान रहे पहचान रहे असन सिंह गलबात करते रहता हूँ, मगर इनके जैसे बनकर बड़ी खासियत है कि जिदा रही वीडियो जिन्हों तेना हर बार किस न किस इनके फार्म में जाए तो कोई नई एक्टिविटी होती है और बड़ी प्रोग्रेसिव एक्टिविटी होती है। और आज से हीरा और तेनाली हाईटेक पाली हाउस तौर जै मेरे ख्याल बड़ा है अजू तक किसी भी फार्मर इंडिविजुअल नहीं बल्कि डिपार्टमेंटल लगो रहे और इन हाईटेक पाली हाउस एस्टैबलिश करो तो इस तरह पाल भी सोर हो शायद किसी की एडम फंक्शनल दुई गल हो सर तुशु प्रोग्राम में स्वागत है। तुम घर बार एक नवी चीज़ मिलती और अज ये बात आई बिल्कुल एक वंडरफुल चीज़ है कि मेरे ख्याल इस इलाके में हाईटेक पाली हाउस कि चलो नहीं पाली हाउस पिछले भी हन किश बोले तो ऐसे बारे में जानकारी दे तुम कि ऐसे हाईटेक बोने से तुम ऐसे कौन।

0: बेनिफिट उठाना चाहता तो और ऐसे हासिल करने में तुसन कौन तरह दे मैं मैं
1: सर शुक्रिया तुश कि तुशे इस किसान माने थ्रू अस अपने जना इसे बिडलाई सुनने वाले हैं बिडलाई समझने वाले हैं तनंतर अस अपनी किस गल बुझाते हैं सर जे अक वक्त और थो कि इसे जै बिडला बिडला रे लोग थी पढ़ लिख रहे लोग थी मेहनती लोग थी लेकिन किस वजह से तने जमीनी कर दूर भेजी थी तो जताली डिपार्टमेंट में किस साइंटिस्ट आए जानी हेरू कि इस इलाके में काफ़ी मतलब पोटेंशियल है किच करने री तो कहीं रिसर्च करता इडी पॉली हाउस से अक बुनियाद साड़ी तो हूँ ना इस पूरे जम्मू कश्मीर में रिसर्च बहरा हो रही है और रिसर्च कामयाब भी बहरा हो रही है तस से जुमरे में मुझे भी यानी मतलब अक निकलो जर पॉली हाउस थी तरफ तो जता भी पॉली हाउस लाओ तो जो तोड़ी ने मैं शिख है कोई भी नवी चीज़ है मुझे तो सारे ही मतलब अन्य जो कि मतलब अपनी जमीन तुझे जाए की स्टार्टिंग में मुझे अन्य जो लोग हैं लेकिन स्टार्टिंग में मैं ये इधर उधर थू कि मैं बानू किच न दस माँ मगर इधर उधर ये थू कि नहीं आज जाया नहीं भरी ऐसे और मैं फायदा साल लूँ तो सर उन टाइम साल सर रो मेरा पाली हाउस से मतलब मेरा लिंक है उन नमी का टलाई पाली हाउस
0: अच्छा
1: ते आकर खुर में जा निकलो पाली हाउस जैसे जो टंडल टाइप थे तस्म सिर्फ बस पनीरी वगैरह दे पनीरी चाहे तुस साले में कुछ बरसाती में देत या ठंडी में देत कुछ वक्त भी तुस प्रोटेक्टेड तुस दे सकते थे पेती साले भी गर्मन में इतनी बार शब हुई कि किंची भी लोग जब दुयों फसल तैने ले बटे लेकिन अगर तुस उनका पाली हो से तुस आराम से अपनो अंतर
0: मान्यता है बारिश के भी प्रोटेक्ट करते हैं अभी बारिश हो चाहे
1: सारो किस इवन की कीड़े शीड़े भी तन में
0: हाँ बिल्कुल दुरुस्त
1: कीड़ो बड़ी बड़ी घाट बीमारी स्प्रे करने जरूरत है ना पे मैं हूं ना तर पाले उसे में स्प्रे नहीं की हो रही हाँ अगर किस फ्लाई वो भेगा थे लेकिन आज तस्मा भी फ्लाई ट्रैप अक शीट वगैरह तो उसे तो ले छड़नो जै भी एजुल कोई भी उड़ने वालों जानवर एजुल कोई भी मक्खी एजल तस ऐसी फैसी खानी कोई नुकसान नहीं करी पाटे तो हूं ना मेरे दुई पाली उस जन था ना चली रहा अक से नवो हाईटेक बन रो था मसा हीज तस्वीरी मसा कंप्लीट घर था लगभग ते तस्मा भी हूं ना थोड़ा गैर सीजन लगो था लेकिन अग्रोवाजा सीजन है जीरा और असन का जताली असन का बरसात बहुत है तताली असन का बेरा टमाटर बिल्कुल ना बोए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल इतनी की मैं एपू 100 रुपये किलो इलेहरा बेच रहा हूँ 150 किलो तर टमाटर थी मार्केट में मैं होलसेल में 100 रुपये किलो बेच रहा तो मेरा प्लान तस्मा तय है कि मैं जूने में तसेरी पनीरी देनी और जून एंडिंग जैसे ट्रांसप्लांटिंग करनी
0: अच्छा फिर तुसी तें टमाटर ते तुसी अंतर तैयार करनो ते फिर बेरे तेरे अंतरे लानो
1: ते अंतरे बुरानो ते अंतरे
0: लेकिन ऐसे टेंपरेचर तुस कंट्रोल कर सकते
1: हां कंट्रोल कर सकते कि ते शटर साइड ही ते शटर सेल था अगर टेंपरेचर ज्यादा ते शटर सेल था तो तस कंट्रोल कर सकते ते मेरा जोन रो मतलब है अपने किसान लाए नहीं है कि अगर तुसन का थोड़ी देर भी जमीन है अगर तुसन का मरलन में भी आए अगर तुस इंटरेस्ट रख ई न जोई होता कि तुस पूरी दिहाड़ी काम करा तुस आग घंटों डेली देत और तुस न ते 10 किनाल जमीन रो सिर्फ 5 मरलन में तुस बेनिफिट से ले सकते तुस कि दे असो और तुस न वाकई गल जोई कि पाली हाउस में सिर्फ बुनने जमीन पर फसल लगे तुस जे साइड ही बेले वारी फसल है कोई भी है चाहे घी हो है करेलो है कोई भी है तुस चढ़ सकते हो
0: अंतर ले सकते
1: अंतर ले सकते हो ना मेका जा 102 फुट लंबो मेगा पाली हाउस है
0: लंबो वाली थी
1: लंबो तस्मा हूं ना कम से कम 200 पौधे लगो 200 पौधे जा बेल वाली फसल है पास प्लस जा मेगा हाईटेक जा सीडलेस खीरो हूं ना
0: जी
1: डिस्ट्रिक्ट डोडे में तो कोई ना ला 1000 तक सौ पैकेट है
0: 20 रुपये
1: मी तो हूं ना लोरो अगर तुस हेरी करा कि मतलब इतरो फल है तस्वर की शोन में गनो तो
0: रेट में कौन कौन रेट है तस्वर
1: रेट रेट नॉर्मल रहा थे संसरे और मगर ई इज अ खीरो सीडलेस है आकता इट एनवायरमेंट में इतना आकता टेस्टी बहुत है कन नरम बड़वा
0: नरम है
1: बहुत नरम खीरो है
0: प्रोडक्शन
1: 21 डॉलर कम से कम 8 से 10 किलो
0: 8 से 10 किलो सीजन कतरो है और कतरे टाइम में रहनो है
1: सीजन लंबो है जुलाई तक
0: जुलाई तक
1: जुलाई तक रहनो
0: अच्छा बेरी टेम्परेचर में बन सके
1: बेरी टेम्परेचर में बनते लेकिन अगर तुसे थोड़ा जल्दी लानो तो तुसे कल्टीवेट प्रोटेक्शन कल्टीवेशन करनी तुसे
0: तुसमें एक चीज़ हो थी कि सर अगर आम जन तरह हर किसान है, अगर अख पाली हो साथ चाहे पंजा फुटे या 100 फुटे लाते, क्या तहसील।

0: कम सब्जी लाने की कैपेसिटी तक कैसे गुना होगी सर जी?
1: सर 10 टाइम कम से कम सर एजने वालों वक्त और होगी वक्त साथ ज्यादा जाए भी वक्त अपडेट बहु ना तो जिंदगी में कामयाब रहो एजने वालों वक्त हो रहा हूँ तुसना तुश इस किसान वैनी थ्रू आऊँ जो था कि सुकास्ट जम्मू मतलब कश्मीर यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तनी जना अपने ठंडू जानन तन तर तनी बनाए ओपन ओपन कल्टीवेशन भी की उन्होंने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी कामयाब तैंके रिसर्च उन्होंने एक कल्चर तैयार किया बल्कि रिसर्च भेरा हो रही है और बहुत पहला उत्तराखंड थू इशो हिंदुस्तान में तने कामयाब क्यों होने इशे और एजने वाला वक्त में असे ठंठ तैयार अंतर करना
0: आ ठंठ थोड़ा हजारें चीजें जने की असन का आसे पास है तना से
1: कंट्रोल कंडीशन में अच्छा सैफरान होना दुनिया रो शहर में महंगो मसालो जी ता भी कंट्रोल कंडीशन में तैयार हो रहा जी ते मेरो तुश मतलब इस किसान वानी थ्रू लोगन से ये है कि भाई तुस पार्ट तो आस नजोन तो अपनो अपनो पेशो चेंज करा लेकिन तो जुड़ा सिर्फ आग कंट्रोल
0: आप सी सर हम तुमके जानना चाहते हैं कि जताली अस ओपन कल्टीवेशन करता हम तस्मा आसन जैसा सेल जो तुम या गोबर तसे थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पेती इस कंट्रोल कंडीशन में क्या तस्मा कोई सुरक्षा है सीरी
1: सर यार मतलब अगर तुसन का गोबर अवेलेबिलिटी नहीं आती फिलहाल तो सर आज तुसन जगह जगह यूनिट तुरंत हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तुसन गोबर खाद आराम से मिल
0: ली
1: और तो 10 टाइम्स ज्यादा काम किया और भी अपनी अजमेरी है चीज एक्सपेरिमेंट की और हमें कि फिलहाल तो मिलते हैं का ये आज तो दुकान ही बड़ी बेची जुरी पैटर्न में तो तय खाद इस्तेमाल कर देना अगर कुछ नहीं आती तो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर
0: मेरे दोनों मतलब है कि अगर गोबर है अस ओपने में सड़ता हूँ तो क्या था थोड़ा तो ज्यादा लगता है कंट्रोल कंडीशन में अंतर फर्ज करें कि जैसे डारे अस जत्र एरिया में असें बेर 10 किलो गोबर सामू अगर तय है असें पाली हाउस तस्मा लोग कंट्रोल कंडीशन में क्या तस यार कुछ बेनिफिट ज्यादा होते
1: हाँ अगर तय कुने की तस्मा गल एल आएगा कि जब फसल तुम सैली दिड़न मतलब दुई महीने में तैयार होनी तो तुम सैली दिड़न तैयार होनी
0: माने भी दिहाड़ी करो गया
1: मैं 8 मार्च खीरो लेवर तू 8 मार्च और हूं ना कितरो चल रहा हूं और 8 मई तर मैं फसल सेली साड़नी फर्स्ट क्रॉप सेली साड़नी
0: मैं इन दिन सी गानी
1: आराम से
0: अच्छा फिर ऐसा से रोटेशन में आता शेर पाते दियो क्रॉप ले सकते
1: दियो क्रॉप अटलाई क्रॉप आराम से सेल सकते पा रहे हो
0: ये है सर हमने यार तो मस्त की शट्ठू जो तकरीबन 80 रुपये किलो के रहा है अगर उस कंट्रोल कंडीशन में तो सर लिख कर तस्वीर तैयार कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से और तुझे तो मेरे ख्याल बेलन वालू शट्ठू भी आए
1: हाँ बेलन वालू शट्ठू
0: लो तुसी
1: मैं एजले लो लेकिन 20 गिन लो तस्वीर थोड़ा टाइम लेट एजते
0: अच्छा और कौन एक्टिविटीज हैं तुस डिफरेंट चीज़ें के लिए तुमने अवार्ड भी मिलते हैं किसी नवी चीज़ें भी लाते रहता है हाजिर बार भी कोई नवी चीज़
1: सर बड़ू की चेहरू हूँ ना मतलब किसान चाहे तो अपनी कौन साइड भी गई सकते थे आग तो थोड़ा उन्हें कि बीज अगर जानकारी लोड़े प्लस प्रॉपर न्यूट्रिशन लोड़े जमीनी ये नहीं आती कि बगैर गोबरे तो कोई चीज़ उगाई सकते पानी भी लोड़े और जल गोबर बोल तो सुनते तुशु पानी लगभग तुशु पानी 33% लगन
0: घट
1: बेगा क्योंकि तस्मा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
0: हो
1: तस्वीर अच्छा प्रोडक्शन भी तुझे ज्यादा इजनी है तो थोड़े सर मतलब कोई भी किसान लाजम इस किसान वाणी थ्रू अल्लाह रसूल ने तो जरूरी नहीं किनाल मंगाए था मरलन पर स्टार्ट करे सवेर पास मरलन पर स्टार्ट करे अपना आधो घंटो दे डील रहते सिर्फ आधो घंटो दे बस इतरो काफी और फिर यह रहता है प्रोडक्शन मतलब कौन मामलो रात
0: अच्छा इसे किसान लाने जो तुम कौन जानकारी दे लाजे फिर कौन है तुम माने तन विशेष पैगाम कौन बोल किसान लाने
1: मेरा पैगाम ये है कि अगर तुम एपू खाने जो लात कि असन का किस जन किसान अंदर बड़े किस्म रहे किस किसान यार जाना हूं नहीं जो पुरानी रिवायती जलन कह रहे रोड़ी गल है अपनी पुरानी चीज़ कोई भी नहीं छड़नी जाना इशो राजमा है इशे कद्दू है इशे हरी हरी चीज़न लेकिन तहे अगर हिंदुस्तान रहा नस्ल जो थी गिर बची तह बेरी मुल्क है मत नहीं गिर लैंडो बनाई और गिर बस से असल 8 से 10 किलोमीटर उभरी दूध नहीं देती ता गिर लैंड हूं 60 किलो दूध दे रहा ठीक है ते असल का तेर जरे हूं मतलब इशो जा राजमा थू हूं हाइब्रिड हो
0: किलो
1: ठीक है ठीक है ना असल का जै अपनी फ्राश बीन थी ता भी हूं हाइब्रिड है हर चीज हाइब्रिड है थोड़े तट पर अपनों भी छड़न ते थोड़े तस पर भी वो करन थोड़े थोड़े थोड़े लान 10-10 डाल लान एपो यार ता सिर्फ मतलब ओरेज कुन राज कि अर्दन बड़े स्केल पर गाल है तो थोड़ा तनी तरह पस्त बेगान कि भाई कि इंसान काल हो बोते

0: कि नहीं जी शम इन्हें असन फसल जाए भेजी
1: जी
0: तन थोड़ थोड़ अन बीज
1: ठीक ठीक हाँ बिल्कुल
0: भरोसेमंद लोग इनका अन बीज अन लाइसेंस होल्डर तन कर बीजन और कोशिश करें कि नव बीज बोए वेल्ड अप टू तस्पुर बहुत लिख रू
1: जी
0: पुरानो बीज नहीं आनो तसेर थोड़ा फल भी घाट बहुत है और तसेरी जर्मिनेशन ज्यादा 50% बहुत है टोटल ते नौ बीजन
1: और बड़ा कास्टली हो
0: 10-10 दाने लान
1: ठीक
0: मीजा हो ना खीरो ले और 1000 रुपए दाने पर कोई गिनर ले तैयार नहीं मगर गल है तसेरी आके काकड़ी 1000 रुपए के तैयार होनी हम भी सोचना
1: हां बिल्कुल
0: ते लिहाजा कोशिश करन कि रोड़ी से रोड़ी वैरायटी लान प्लस दस जमीन तो यूज कर रहा और तस गोबर से पर न्यूट्रिशन पूरी बहुत तस फिर गए तो तस जमींदारी करन बाकी ये नहीं कि मतलब अगर अस इन सिर्फ बड़ी फसल लाती साले में अक फसल ना दूसरी फसल इन अटलाज चोर फसल तो नहीं सब
1: तुसी टाइम प्रोग्रामर ने टाइम दी तो तुसी आ रही है कि अक्का गर्ल्स है तो समझा कि सुनने से तुलने रही है आशीष किसान लाल कई फायदे उठे रहा और इन्होंने मुमकिन है कि तुसी दिता गलबात सुनता था अगरा भी उठा ले तुसी प्रोग्रामर ने टाइम दी तो तुसी शुक्रिया
0: शुक्रिया
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना

0: पता नहीं नज़र तो अगर कोई भी तन लगते कि कोई नज़र तो
1: कोई
0: फ्लू
1: जी बिल्कुल
0: तन बीमारी अपने मुल्क में तो तने कोने कि नीर बाई वेटनरी सेंटर से तड़के तो तने अपने मुल्क तने चेक कर सकते
1: जी जी
0: ते और डॉक्टर का तो जानकारी गिनी सकते हैं तो असि जो इन्फेक्शन कभी अपने जन ने मुर्गे बचाने के साथ ही अनिश्चित सान लाने इंतजार बनो कि मौसम और मौसम काल अभी ये रजोर रहा
1: जी
0: और
1: जी
0: ज़्यादा का ज़्यादा टेम्परेचर गल करम 3 डिग्री और घट कर घट 12 डिग्री तो असें साथ ही इसे प्रोग्राम वक्त भी पूरा बोते ते अपने सुनने वाले के मकद में इजाजत
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

अभी आप किसानवाणी प्रोग्राम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी भदरवाह से आपसे मुखातिब है FM 101 MHz पर। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में और उसके फौरन बाद अंग्रेजी में खबरें रिले की जाएंगी। रिले का जरा सा इंतज़ार कीजिए।

0: आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए।

0: और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर बाद यानी 6:15 पर डोगरी में खबरें व तबसरा आकाशवाणी जम्मू से रिले किया जाएगा। रिले का चंद लम्हों के लिए इंतजार कीजिए।

0: ए आकाशवाणी जम्मू ऐ संञा खबरें च तुंदा स्वागत। पैह्ले खास खास खबरें कन्नै मैं विजय बजाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें श्रीनगर च कश्मीर साहित्य उत्सव दे त्रीये संस्करण दा उद्घाटन कीता। उनें लखारियें गी गुजारिश कीती जे ओह् रचनात्मक शैली दे राहें सार्थक विचारधारा गी आकार देन। उपमुक्खमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें जम्मू च बागे बाहू आह्ले डाक बंगले च जारी निर्माण कम्में दा जायजा लैता। उनें अधिकारियें गी गुणवत्ता बरकरार रखदे होई कम्मै च तेजी आनने दे निर्देश जारी कीते। पुंछ च इक मकामी जागते पासेआ फौरी अलर्ट दे मगरा सुरक्षाबलें मोर्टार शैल गी कामयाबी कन्नै नकारा बनाई दित्ता ऐ। जम्मू च पैह्ली शा 3 जून तोड़ी घर घर जाइयै लैते जाने आह्ले मरदमशुमारी दे आंकड़ें सरबंधी अभियान लेई तैयारियां जारी न। मौसम विभाग ने मानसून दौरान प्रदेश च सामान्य जां एह्दे शा घट्ट बरखा बरने ते जून म्हीने केईं इलाकें च सामान्य शा मती बरखा बरने दी भविक्खवाणी कीती ऐ। हुन खबरें दी तफसील कन्नै शगुफ्ता चौधरी।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें अज्ज श्रीनगर च कश्मीर साहित्य महोत्सव दे त्रीये संस्करण दा उद्घाटन कीता। इस मौके पर बोलदे होई उनें लेखकें गी अपील कीती ऐ जे ओह् काल्पनिक कथें, वास्तविक तथ्यें ते होरने रचनात्मक विधाएं दा उपयोग करियै लोकें गी प्रेरित करन ते उंदे च सकारात्मक विचारें गी बढ़ावा देने आस्तै करन। मनोज सिन्हा होरें आखेआ ऐ जे लेखकें दा कम्म शब्दें कोला बड़ा मता हुंदा ऐ जेहड़ा समाज दी नब्ज गी पंछानदा ऐ। उनें उपनिवेशक मानसिकता गी छोड़ने दा आह्वान कीता ते बाहरले मुल्कें च भारत दे इतिहास ते अज्जै दी स्थिति गी गलत तरीके कन्नै पेश करने प्रति चेतावनी दित्ती। उपराज्यपाल होरें आखेआ ऐ जे लेखकें दा एह् फर्ज बनदा ऐ जे ओह् इस चाली दियें गलतियें गी ठीक करन ते दुनिया भरै दे पाठकें तगर सच्चाई पजान। इस मौके पर बोलदे होई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें अग्गे आखेआ,
2: मैंने कई अवसरों पर इस बात को देखा है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, सरकारी मशीनरी वैश्विक विमर्श करने के लिए कई बार करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन एक फिक्शन या नॉन फिक्शन नॉवेल वह असर कभी कभी पैदा कर देता है जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि लेखनी शब्दों में नहीं, दिल की

0: दोनों में बसती है। और इसलिए कुछ वर्ष पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान किया था कि हमें औपनिवेशिक मानसिकता हमारी उसके हर अंश को अब मिटाने का समय आ गया है।
1: उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें अज जम्मू दे बागे बहू आले डाक बंगले च जारी निर्माण कम्में दा जायजा लैता। इस मौके पर उन्हें सरबंधत अधिकारियों गी निर्देश दिते जे ओ गुणवत्ता सरबंधी मानकें गी बरकरार रखदे होई निर्माण कम्में च तेजी आनन। उन्हें अग्गे आखिया जे बागे बहू च औने आलें गी बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने लई इस निर्माण कम दा समय सिर सबूरा कीता जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। अधिकारियों गी आख्या गया है जे ओ कम्में च हासिल प्रगति दी नियमित तौर पर निगरानी करदे रौहन ते सुरक्षा ते निर्माण संबंधी सबने दिशा निर्देशों दी पालमा यकीनी बनान। इस परियोजना दा मकसद सैलसफा मतलक ढांचे दा बाधा विस्तार करना ते सैलानियों गी बेहतरीन तजर्बा हासिल करवाना है। पुंछ च एस के पुले दे कश जॉगर्स गार्डन च इक जिंदा मोटार दा गोला बरामद कीता गया। इक मकामी जागतै इक संदिग्ध चीजे गी दिखया ते उसने तुरंत पुलसै गी सूचना दिती। साढ़े जिला संवाददाता दी रिपोर्ट दे मुताबक पुलसै दस्या जे इक जागतै गार्डन दे नेड़े गोला पेदा दिखया ते तुरंत उनेंगी जानकारी दिती। तुरंत कार्रवाई करदे होई पुलिस दी इक टीम ने मौके पर पुज्जिये इलाके गी सुरक्षित कीता ते गोले गी भी सुरक्षित थारा पर पजाया। मगरा फौज ते बंब नकारा करने आले दस्ते ने बगैर कुसे नुकसान दे गोले गी नकारा करी दिता। अधिकारियें उस जागता दी सतर्कता दी सराहना कीती ते लोकें अग्गे अपील कीती जे उनेंगी कोई भी नई संदिग्ध वस्तु लब्भे ते उसी हथ नहीं लान ते ओदी सूचना तुरंत पुलिस गी देन। आकाशवाणी खबरें कन्नै गल करदे होई उस जागतै दस्या,
2: मैं आरोप कस्बा तहसील हवेली डिस्ट्रिक्ट मुंछ का रहने वाला हूँ। मैं डेली यहाँ पे एसके ब्रिज के पास जोगर पार्क में हूँ और हर दिन की तरह आज भी मैं यहाँ पे सुबह के टाइम वॉक करने के लिए आया तो मैंने देखा कि इधर यहाँ पे जगह हम वॉक करते हैं वहाँ से 5-6 फीट की दूरी पे कोई चीज पड़ी हुई है। नजदीक जाके मैंने देखा था वो एक शेल था। मैंने लोगों को इन्फॉर्म भी किया, वहाँ पे बाकी लोग भी थे जो वॉक कर रहे थे क्योंकि सिटी में पैनिक हो जाता है बहुत ज्यादा। मैंने उसको साइड रखा थोड़ा जिधर जिस किसी की नजर ना पड़े। रखने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म किया। जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम वहाँ से मेरे साथ था, यहाँ पे मौका पे आके देखा। उन्होंने देखने के बाद आर्मी को इन्फॉर्म किया,
1: राजौरी दे गंभीर मुगलन खेतर च आपरेशन शेरोवाली 8वें रोज दाखल हुई गया है जिथे सुरक्षा बलें डोरीमल जंगलें च आतंकरोधी अभियान जारी रखे दा है। अधिकारियों दस्या है जे कने जंगलें ते दुर्गम पहाड़ी इलाके च तलाशी अभियान जारी है जेदे कने इलाके च सुरक्षा बंदोबस्त बड़े निग्गर बनाए दे न। सुरक्षा बलें खतरे गी खत्म करने आस्ते ते खेतर गी पूरी चाली कने सुरक्षित बनाने आस्ते सख्त निगरानी रखी दी है। पिछले शनिवारें डोरीमल गंभीर मुगलन इलाके च सुरक्षा बलें ते आतंकवादियों बशकार उसले टाकरा भखिया हा जिसले खुफिया जानकारी दे मुताबक सांझी टीम ने इलाके च किश आतंकवादियों की मौजूदगी बारे सूह थ्होने मगरा अभियान शुरू कीता हा।
3: ए खबरां साडी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एदे इलावा तुस ए खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो।
1: ते हुन बाकी दिए खबरें कन्ने विजय बजाज।
3: जम्मू च औंदी पहली थमां 30 जून तोड़ी करवाए जाने आले घर घर जाइयै मर्दमशुमारी सरबंधी आंकड़े किट्ठे करने दे अभियान कोला पहले सब्भनें जिलें च इसगी लेइयै तैयारियां जोरें शोरें जारी न। माड़ तहसील च अज्ज इन्यूमीरेटरें ते सुपरवाइजरें गी मर्दमशुमारी सरबंधी किट्टां तकसीम कीतियां गईयां। सरबंधत अधिकारियें दा आखना है जे इस अभियान दे दौरान सरबंधत अमला घर घर जाइयै लोकें कन्नै मिलग ते घरें मकानें ते आबादी सरबंधी सटीक आंकड़े कठेरना यकीनी बनाग। बसनीकें गी गुजारिश कीती गई है जे ओह इस सर्वेक्षण गी व्यवस्थित ते कामयाबी आले ढंगै नै सबूरा करोआने च अपना पूरा पूरा सहयोग देन। ध्यानजोग है जे जम्मू च इल्लै आपू आनलाइन अपने ब्यौरे दर्ज करने सरबंधी सैल्फ इन्यूमीरेशन आली प्रक्रिया चला करदी है ते कल 31 मई तोड़ी एह प्रक्रिया बरोबर जारी रहोग। इस सरबंधै च होर मती जानकारी देआरदे न जम्मू कश्मीर दे चीफ प्रिंसिपल सेंसस अधिकारी अमित शर्मा।
4: ये आपके ऊपर रखा है, मतलब कल रात को 12 बजे तक ये खुला है। अभी जो हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग का हमारा जो HLO का पहला मरला है उसके रिगार्डिंग ये लोग अपना डेटा खुद भर सकते हैं। 33 सवाल है, बड़े सिंपल से ऑप्शंस आते हैं उसमें, उनको सिर्फ उसको जवाब देना था। और अगर उनका रह गया है तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। 1 से 30 जून अगले जो सोमवार है, सोमवार से लेकर अगले 4 हफ्ते तक घर घर हमारे सुपरवाइजर और रिमुनरेटर जाएंगे। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स जो है उसमें विजिट करेंगे तो वो लोग अपना तब दे सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऐतवारें दिने 11 बजे आकाशवाणी दे अपने मन की बात कार्यक्रम दे राहें देश विदेश

0: च महिला आपसाइता समूह रिवायती मक्कें दी फसलें दी थाह्र गुट्टे दे फुल्लें दी काश्त आह्ली बक्खी तेजिया कन्नै बधा'रदे न। एह् बदलाऽ बड़ा मता लाह् हासल कराने आह्ला, घट्ट समें लैने आह्ला ते करसानें गी फसलां बर्बाद करने आह्ले बांदरें दे त्राह् कन्नै निब्बड़ने आस्तै मददगार साबत होआ'रदा ऐ। राई बाई मैह्कमा आपसाइता समूहें दे सदस्यें गी मुफ्त हाईब्रिड बीऽ, तकनीकी सिखलाई ते समें समें पर मार्गदर्शन देआ'रदा ऐ। कृषि विज्ञान केन्द्र दे माहिर रामबन च वर्कशापें दा आयोजन करियै करसानें गी साइंसी ढंगै कन्नै फसलां राह्ने ते उनेंगी बमारियें शा बचाऽ दी सिखलाई देआ'रदे न। करसानें दा आखना ऐ जे इस पैह्ल कन्नै औंदन च बाद्दा होआ'रदा ऐ ते जिले च जंगली जनौरें करी होने आह्ले नुकसान च बड़ी मती कमी आवा'रदी ऐ। आप सहायता समूह दी इक लाभार्थी ललिता देवी दा इस बारे आखना ऐ।
1: खेती करती हूँ और हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं सबने ये फूल लगाए हैं। हमें ये फूलों की खेती बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सी आसानी है। हम मक्की लगाते थे तो उसमें बहुत सी परेशानी होती थी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तो अब हमें बहुत आसानी है क्योंकि हम ये फूल जम्मू बेचते हैं, कटरा बेचते हैं, तो आज ये फ्लोरिकल्चर वाले हमें फ्री में बीज देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं और मौके मौके पर आते रहते हैं, हमें सिखाते हैं भाई ये फूलों की खेती कैसे करनी है।
0: ते हुन मौसम। मौसम विभाग दे श्रीनगर केन्द्र नै दक्खन पच्छम मानसून 2026 बारे भविक्खवाणी जारी कीती ऐ। एह्दे मुजब जम्मू कश्मीर दे मते सारे हिस्सें च इस बरे जून थमां सितंबर तोड़ी सामान्य या सामान्य शा घट्ट बरखा बरने दी मेद ऐ। भविक्खवाणी च औने आले म्हीने दौरान खित्ते दिएं केईं सारी थाहरें पर बक्ख बक्ख दर्जे दी बरखा बरने ते औंदे जून म्हीने दौरान केईं इलाकें च सामान्य थमां मती बरखा बरने दे भी आसार दस्से गे न। लोकें गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह् मौसम च होने आले इनें बदलावें लेई तैयार रौह्न। तोआई मौसम विभाग नै जम्मू कश्मीर च अज्ज बरखा, गरज चमक, ऐनगड़े ते अंधी झक्खड़ दी भविक्खवाणी कीती दी ऐ। उआं 31 मई थमां 3 जून तोड़ी मौसम आमतौरै पर खुश्क रौह्ग, जिसलै कि 4 ते 5 जून गी भी बरखा दी मेद ऐ। इस बारै होर जानकारी देआ'रदे न मौसम विभाग दे डायरैक्टर मुख्तार अहमद।
2: अभी जैसे एक्सपेक्टेड था ऑलरेडी कि टिल आफ्टरनून मौसम ठीक रहेगा, फिर आफ्टरनून के बाद कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा गस्टी विंड्स आ रहे हैं, थंडर शावर एक्टिविटी और हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है, गस्टी विंड्स भी चलने के चांस हैं खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी। और कल भी जो है मौसम खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर क्लीमेंट वेदर की पॉसिबिलिटी है।
3: अखीरै च खास खास खबरां इक बारी परतियै। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें श्रीनगर च कश्मीर साहित्य उत्सव दे 3 संस्करण दा उद्घाटन कीता। उनें लखारियें गी गुजारिश कीती जे ओह रचनात्मक शैली दे राहें सार्थक विचारधारा गी आकार देन। उपमुक्खमंत्री सुरेंद्र चौधरी होरें जम्मू च बागे बाहू आले डाक बंगले च जारी निर्माण कम्में दा जायजा लैता। उनें अधिकारियें गी गुणवत्ता बरकरार रखदे होई कम्में च तेजी आनने दे निर्देश दित्ते। पुंछ च इक मकामी जागतै आसेआ फौरी अलर्ट ते मगरा सुरक्षाबलें रिहायशी इलाके च पेदे इक मोटार शैल गी कामयाबी कन्नै नकारा नेईं दित्ता। जम्मू च पैह्ली शा 3 जून तोड़ी घर घर जाइयै लैते जाने आले मर्दमशुमारी दे आंकड़े सरबंधी अभियान लेई तैयारियां जारी। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त होआ।
4: आओ करचै गल्ल गवांडियें दी। अपनी सीमाएं दी सुरक्षा गी निग्गर बनाने दे मकसद कन्नै भारत ने हाल च गै इक महत्वपूर्ण फैसला लैता ऐ, जेह्दे नै बन्ने पारा घुसपैठ, नशा तस्करी ते भारत खलाफ चलाए जा करदे परोक्ष युद्ध गी मती पछाड़ लगने जा दी ऐ। एह् फैसला अंतर्राश्ट्रीय बन्ने कन्नै लगदे 15 किलोमीटर दे इलाके च गैर कानूनी निर्माण हटाना ते इस इलाके च BSF दी गश्त ते निगरानी गी होर तेज करना। इस फैसले बारे सुनिए साढ़े सब्भनें शा नेड़में गुआंढी पाकिस्तान गी मती तकलीफ होआ करदी ऐ कि जे पाकिस्तान च फौज दा दबदबा ते सरकार दी डंग टपाई चला'रदी ऐ आतंकवाद दे सहारे ऐ। 1947 च मुल्खै दी बंड दे बाद वजूद च आए दे पाकिस्तान ने शुरू थमां गै भारत गी लेइयै मनै च जबरदस्त कौड़तन पाली दी रखी। एह् उस्सै कौड़तन दा नतीजा ऐ कि 1947, 1965, 1971 च उन्नै भारत दे हत्था जबरदस्त कुटासरा खाने दे बाद परोक्ष युद्ध दे रूपै च आतंकवाद दा सहारा लेआ, चेचा करियै जम्मू कश्मीर च बदअमनी फैलाने लेई। पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आसिया फैलाए जा रहे आतंकवाद का असर छड़ा जम्मू कश्मीर च गै दिखने की लब्भा। मुंबई आतंकी हमला, संसद पर हमला, पठानकोट, दिल्ली धमाके, जित्थे कुदरे भी आतंकी वारदात पेश आई वह करतूत पाकिस्तान दी गै सामने आई। ए ते रही गल भारत दी, पर भारत दे बाहर भी जड़े आतंकी कांड होंदे न उंदे पिछे दे तार भी पाकिस्तान गै आइए जुड़दे न। अमरीका च होए दे 9/11 आले हमले गी कुन नहीं जानदा ते ओदा मुख साजिशकर्ता भी आखिरकार पाकिस्तान च गै छप्पे दा लब्भा हा।

0: एह ते रेही गल्ल पाकिस्तान दी असल हकीकत दी, पर जेहड़ी ताजा तकलीफ पाकिस्तान गी होआ करदी ऐ ओहदा कारण ऐ भारत आसेआ अपने बन्ने कन्नै लगदे इलाकें गी सुरक्षित करने दे उपाऽ, जेह्दा पाकिस्तान कन्नै कोई लैना देना नेईं, पर फ्ही बी सब्भनें शा मती ढिड्ड पीड़ उसी गै होआ करदी ऐ। भारत दी इस कार्रवाई कन्नै की जे बन्ने कन्नै लगदे इलाके थमां अवैध निर्माण हटाई दित्ते जांगन ते संदिग्ध गतिविधिएं पर सिद्धी नजर रखी जाई सकोग, सुनसान इलाकें च पाकिस्तानी जसूसें, घुसपैठिएं ते आतंकवादिएं दा छप्पना जेहड़ा पैहले बड़ा आसान हुंदा हा हुन मुश्कल होई जाग। पाकिस्तान आसेआ ड्रोन ड्रापिंग ते खुफिया सुरंगें राएं बन्ने पारा थेहार ते नशीले पदार्थें दी स्मगलिंग पर भी हुन रोक लग्गी जाग, कि जे पैहले ते एह सारे कम्म बन्ने दे इलाके च इक सेफ हाउस दी शक्ली च बन्ने पार बैठी दियां ताकतां तोड़ चाढ़ी सकदियां हियां। इन्ना गै नहीं, नमीं पहलकदमी कन्नै 15 किलोमीटर दे पूरे इलाके दा कंट्रोल बीएसएफ दे हत्थै च आई जाने ने पाकिस्तान दी दुनिया भरै च बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ते ओह्दे स्लीपर सैलें दियें गतिविधियें पर चबक्खिया दा नेड़मी तक रखी जाई सकग। पाकिस्तान जेहड़ा मता ध्यान अपने लोकें दी सुध लैने दे बजाए अपने गुआंढियें दे घर केह् होआ करदा ऐ दिलचस्पी ओह्दे च मती रखदा ऐ, उन्नै फिलहाल अजें धोड़ी एह्दे पर कोई अधिकारिक तौरा पर प्रतिक्रिया नेईं दित्ती ऐ ते देना बनदी भी नेईं। पर माहिरें दा एह् मन्नना ऐ कि जेहड़े लोक रोआर पार आतंकवाद, हथियारें ते नशीले पदार्थें दी स्मगलिंग ते इस चाल्ली दे होरनें गैर कानूनी कम्में च शामल न, ओह् जरूर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा तैयार करने पर विचार करा'रदे होने जेह्दे ने उंदा एह् धंधा परतियै सिर पुट्टी सकै। भारत की जे एह् कार्रवाई अपने इलाके च करा करदा ऐ, इस करियै पाकिस्तान अधिकारिक तौरा पर एह्दे उप्पर कोई टिप्पणी नेईं करोग, पर अंदरोगति उसी एह् डर पेई गेदा ऐ ओह्दी आतंकवाद दी फैक्टरी दा कम्म बंद होने आला ऐ ते ड्रग माफिया कन्नै संडगंड करियै जेहड़ा कारोबार ओह् करदा हा ओह्दा सूपड़ा भी तौले गै साफ होने आला ऐ। गल गुआंढियें दी च अज्ज बस इन्ना गै, कल इक होर विशे कन्नै फ्ही मिलगे। जय हिंद।
1: ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। समय शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम फिल्म संगीत। आगाज में आपको सुनवाते हैं हीना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। नगमा निगार और मौसीकार हैं रविंदर जैन। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आइए आप सुनते हैं अर्पण फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म राम लखन का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के थे। संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सामिन आइए आप सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 MHz पर। श्रोताओं, 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद हालात हाजरा पर मैं अपनी प्रोग्राम शहरबीन, 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, 7:40 पर उर्दू में खबरें व तबसरा, और रात 8 बजे वादी की आवाज प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। रिले का चंद लम्हों के लिए इंतजार कीजिए।

0: Money, Srinagar. अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं, कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। रामसू में सड़क हादसा, 2 अफराद जान बहक। हुज्जाज की वापसी 2 जून से शुरू, ताहम शेड्यूल से मुतल्लिक हुज्जाज के तहफुजात। और डोडा में कल शाम फिर ज्यादा बारी हुई, फसलें नुकसान ज्यादा। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
7: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
6: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
7: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
6: अच्छा भाभी।
7: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
6: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
8: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इन ड्रग बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: अरे माँ देखो एक्सीडेंट।
10: रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
11: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
10: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
11: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
10: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
11: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
10: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
11: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
10: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
11: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
10: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
12: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: शेरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के 3rd एडिशन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि नौ आबादियाती जहनीत के तमाम आसार मिटाने और भारत की दुरुस्त तारीख दुनिया तक पहुंचाने की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि अदीब और दानिश्वर अफसानवी या गैर अफसानवी तहरीरों के जरिए मुस्बत बयान या तश्कील दें और तारीखी हकायक को आलमी कारायन तक पहुंचाएं। एलडी मौसूफ ने मजीद कहा कि भारत की कदीम इल्मी, साइंसी और सकाफती खिदमात को उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। समय श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज सुबह रामसू में पेश आए एक हादसे में दो अफराद मौके पर ही जान बहक हुए। बताया जाता है कि चूने की बोरियों से लदा एक ट्रक रामसू में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर झुलस कर हलाक हुए। उधर चिनानी उधमपुर में कल शाम पेश आए सड़क हादसे में एक मियां बीवी के जख्मी होने की इत्तला है। तफसीलात के साथ मोहम्मद अस्कीन।
5: आज अलग सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामसू के गांगरू इलाके में पेश आए सड़क के एक दिलदोज हादसे में दो अफराद हलाक हुए हैं और शाहरा से नीचे खाई में गिरे ट्रक ने आग पकड़ ली और अपने दोनों सवारों समेत जल गया। पुलिस हुकाम ने शहरबीन को बताया कि चूने की बोरियों से लदा यह ट्रक नंबर JK16A0693 जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहा था कि गांगरू के मुकाम ये ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नीचे खाई में जा गिरा। उन्होंने कहा कि खाई में गिरते ही ट्रक ने फौरन आग पकड़ ली और ट्रक मुकम्मल तौर से खाकस्तर हो गया है। पुलिस का कहना है कि नजदीकी तामीराती कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से इतला मौसूल होते ही पुलिस स्टेशन रामसू की टीम, हिमालयन क्योरिटी रामसू के रजाकार, CRPF और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्रवाई का शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि बचाव टीमें जब मौके पर पहुंच गई उस वक्त ट्रक मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ चुका था और बुरी तरह से जले ट्रक में फंसे अफराद को निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि कई घंटों तक जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ट्रक के जले हुए केबिन से ड्राइवर और कंडक्टर की अब जली लाशें बरामद की गई और वो दोनों अफराद मौके पर ही जहां बाँक हो चुके थे और उनकी लाशें जुजवी तौर पर झुलसी हुई हालत में पाई गई। पुलिस ने इस हादसे में लुकमा अजल बने अफराद की शिनाख्त शाकिर अहमद मनहास वलद लियाकत अहमद मनहास साखना वनत्राग गोपालपुरा अनंतनाग और कंडक्टर मोहम्मद इकबाल वानी साखना किहरी बल अनंतनाग के तौर पर की गई है। रामसू पुलिस ने एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। इस दौरान कल शाम जिला उधमपुर ने चिनानी पत्नी टॉप की साबका शाहरा पर पेश आए सड़क के एक हादसे में एक आल्टो कार में सवार मियां बीवी उस वक्त जख्मी हो गए जब एक बाहरी बरकम इंडियन ऑयल टैंकर ने इस आल्टो कार को टक्कर मार दी। इस तसादुम के नतीजे में टैंकर सड़क पर उलट गया जिसके बाइस चिनानी पत्नी टॉप सड़क कई घंटों तक बंद रहने के बाद दोबारा बहाल कर दी गई। हादसे में जख्मी होने वाले मियां बीवी को पूरी तौर पर इलाज के लिए चिनानी के अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी हालत बेहतर है।
0: मोहम्मद अस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कुलगाम से फारूक राठौर की इत्तला है कि काजीगुंड के गोजर बस्ती लिम्बर इलाके में आज एक रीछ के हमले में एक खातून और उसका बेटा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त रुकैया और उसके बेटे साकिब अहमद के तौर पर हुई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि रुकैया की हालत ज्यादा नाजुक होने के पेश नजर उसे GMC अनंतनाग रेफर किया गया है। इधर चाडूरा के कुलत्र इलाके में नामालूम अफराद ने कल दौरान शब सैकड़ों सेब के दरख्त और हाई डेंसिटी पौधे काट डाले। बाग मालकान के मुताबिक इस वाकये से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। समन जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला 2 जून मंगलवार से शुरू हो रहा है। ताहम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हुजाज की वापसी का जो शेड्यूल मुश्तहर किया है उससे हुजाज को फिक्र तश्वीश लाहिक हुई है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के हुजाज की परवाजें अब की बार बराह रास्त श्रीनगर पहुंचने के बजाय पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगी और वहीं पर कस्टम्स और इमिग्रेशन वगैरह का अमल अंजाम दिया जाएगा जिसके बाद हुजाज श्रीनगर पहुंच पाएंगे। यही नहीं, हुजाज को अब की बार सिर्फ 5 किलो चेक इन बैगेज और 7 किलो हैंड बैगेज की इजाजत होगी और ये कि 5 किलो से ज्यादा का चेक इन बैगेज अहमदाबाद से सड़क के रास्ते श्रीनगर पहुंचाया जाएगा और चेक इन बैगेज की हद भी 30 किलो होगी। इस सिलसिले में सऊदी अरब से हुजाज अपनी रुदाद कुछ यूं बयां करते हैं।
13: हम हुजाजुल कश्मीर सऊदी अरबिया से शहरबीन के ज़रिए से रियासती हज कमेटी को इत्तला कर देते हैं। जो भी हुक्मनामा उन्होंने कल जब हम मशगूल थे जमरात में हमारे लिए निकाल दिया और हमारे जहन को मुंतशिर कर दिया है, जहनी कोप्त करके हमें तबाह कर दिया है, उनसे उस हुक्मनामे को वापस ले जाने की पुरजोर अपील करते हैं और हमारे साथ किया हुआ वादा जो 20-20 और 7 kg का किया गया है उसको अमली तौर जवाब पहनाने की कोशिश नहीं, यकीन दिलाने करके ہمارے سامان کے اور ہمارے حقوق کے تحفظ کر کے ہمیں سری نگر ایئرپورٹ پہ امیگریشن ہو. جب بھی کوئی ہمیں امیگریشن میں کوئی فیس بھرنی ہوگی وہ ہم اپنے سامنے اپنے ادا کریں گے. اس کے برعکس ہمیں کسی بھی زمرے میں نہ لایا جائے. اور صرف یہ حکم نامہ ریاستی جموں کشمیر کے لیے ہے, باقی کسی بھی ریاست کے حجاج کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اس لیے ہم حجاج الکشمیر ریاستی حج کمیٹی کو مکمل طور ہمارا دفاع کر کے ہمارا سامان اور ہمیں مکمل طور سری نگر ایئرپورٹ پہ جو بھی کام ہوگا وہاں ہی سر انجام دیا جائے اور ہمارے سامان کا تحفظ کر کے ہمیں ہمارے ساتھ لانے کی اجازت ہوگی.
0: سعودی عرب سے کشمیر کے حجاج کی روداد. ہم نے اس معاملے کے تعلق سے ابھی کچھ وقت پہلے جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت قریشی سے بات کی, جنہوں نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا.
14: جی ان شاء اللہ حجاج کرام کے آنے کا سلسلہ 2 جون سے 2 جون سے شروع ہوگا ان شاء اللہ. اب جو ایئرپورٹ ہے سری نگر ایئرپورٹ رن وے انڈر مینٹیننس ہے, فرام اپریل سے اکتوبر تک انڈر مینٹیننس ہے, جس کی وجہ سے ہیوی لوڈڈ ایئر کرافٹ لینڈ نہیں کر پاتے. تو یہ وجوہات بنی کہ ان کی جو امیگریشن اور کسٹمز کلیئرنس جو حجاج کرام کی ہوگی وہ احمد آباد میں ہوگی. احمد آباد سے جو لگیج ہوگا وہ تھرو روڈ آئے گا, لگیج کا 30 kg اور 5 kg لگیج چیک ان لگیج جو ہے وہ حاجی صاحب کے ساتھ آئے گا, پلس 7 kg ہینڈ بیگ. تو اس میں وجہ یہی ہے کہ رن وے انڈر مینٹیننس ہے, تو ہمیں شارٹ اسٹرپ ہی اس وقت اویلیبل ہے لینڈنگ کے لیے.
0: تو کیا کم از کم یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ان کا لگیج احمد آباد سے یہاں پہنچایا جانا ہے وہ ایئر لائن کے ذریعے پہنچایا جائے تاکہ اس کے پہنچنے میں زیادہ تاخیر نہ ہو؟ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لگیج میں عام طور سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو تبرک کے طور پہ پھر تقسیم کی جاتی ہیں عزیز و اقارب میں, اس کے آنے میں اگر جلدی ہو جاتی ہے روڈ کے ذریعے تو خیر ظاہر ہے کہ بہت ٹائم لگے گا, پھر اس میں دقت بھی ہو سکتی ہے اس کو لوکیٹ کرنے میں باقی چیزوں میں.
14: جی ہم نے یہ ایشو پہلے ہی ٹیک اپ کیا تھا حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن ہم نے انہیں آپشن ایک دیا تھا کہ ہم ایڈیشنل فلائٹ فرام جدہ ٹو سری نگر رکھیں, لیکن اس میں ایشو آ رہا تھا گاکا کے اپروول, جو سول ایویشن اتھارٹی ہے سعودی عربیہ کی, وہ ایڈیشنل فلائٹس کو لینڈنگ کے لیے اسپیس نہیں دے رہے ہیں. تو ہمیں جو یہاں سے 28 فلائٹ گئی ہیں انہیں کی اسپیس میں چاہیے رن وے پہ سعودی عرب میں جدہ میں, اس لیے ایڈیشنل فلائٹس ممکن نہیں ہو پائی.
0: جیسا آپ نے کہا کہ سری نگر ایئرپورٹ کی مینٹیننس ہو رہی ہے اور یہ اکتوبر تک چلے گا سلسلہ, لیکن جب فلائٹس کی روانگی ہوئی یہاں سے اس وقت بھی تو خیر یہ چل رہا تھا سلسلہ مینٹیننس کا, اس وقت تو کوئی دقت پیش نہیں آئی؟
14: جی جی, جس وقت جانے کا ڈپارچر کا سلسلہ تھا اس وقت بھی لگیج 15 kg لیس کیا گیا, تو اگینسٹ 40 kg ہم نے 25 kg ہی الاؤ کیا, لیکن حجاج کرام آنلی 18 kg ہی لے کے گئی, کیونکہ اس بار

0: उन्हें ड्राई राशन भी साथ नहीं ले जाना था, तो ओनली 18 kg ही था हमारा चेक इन ले गई था, 25 अलाउड था, लेकिन जज का हम 18 ही लेके गए, तो उसमें भी कट था टेक ऑफ के लिए भी।
1: सो अभी आप ये कह रहे हैं कि जो फ्लाइट पहले अहमदाबाद आएगी फिर वहां से उनको ट्रैवल करना होगा श्रीनगर, ये जो एक अरेंजमेंट किया गया है इसकी फकत एक ही वजह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट की मेंटेनेंस हो रही है
0: जी, जी
1: इसके सिवा कोई और वजह नहीं है?
0: नहीं और कोई वजह नहीं।
1: क्या चूंकि अब तो खैर 2 ही दिन बचे हैं उनकी वापसी में, क्या ये पॉसिबिलिटी दोबारा एक्सप्लोर की जा सकती है कि जो उनका लगेज वापस आना है वो रोड के बजाय बाय एयर आ जाए?
0: नहीं, अब हमने काफ़ी कोशिश की इसमें, जो भी अथॉरिटीज हैं कंसर्न, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, थ्रू आज कमेटी ऑफ इंडिया या माइनॉरिटी अफेयर से, कोशिश काफ़ी की गई हर लेवल पे, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया।
1: ये थे जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात कुरैशी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से, इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम का बेहंगम मिजाज बरकरार है, जिसके असरात बिलखसूस ज़राअत और बागबानी के शोबों पर मुरतब हो रहे हैं। इस सिलसिले में अभी लगभग 15 मिनट पहले शोपियां से फयाज वानी ने हमें इतला दी कि शोपियां जिले के मुख्तलिफ देहात में आज शाम लगभग 7:10 शदीद जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा बागात के साथ साथ खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। नुकसान से मुतालिक तफासील का इंतजार है। याद रहे कि पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकाजात में जालाबारी और आंधियों से जरई शोबे को खासा नुकसान पहुंचा। इनमें पट्टन, रफियाबाद, कुलगाम, शोपियां, कंगन और कई और इलाके शामिल हैं। उधर जम्मू डिवीजन के डोडा जिले में कल शाम फिर एक बार जालाबारी हुई, जिसने मेवा बागात के साथ साथ धान की पनीरी और सब्जी की फसल को गहरा नुकसान पहुंचाया। वाजिर है कि ज़राअत और बागबानी के वजीर जावेद अहमद डार ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में अगले 1.5-2 माह के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाएगी, पर जिस एतबार से फसलों पर मौसम की मार पड़ रही है लगता है कि स्कीम लागू होने तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिलहाल एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा।
5: गुज़श्ता दिनों और काल शाम की तेज आंधी और जालाबारी से खिताई चनाब के जिला डोडा में मेवा बागात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तलात मौसूल हुई है और तुगियानी आने की सूरत में छोटे बड़े नदी नालों में पानी की सतह में काफी हद तक इजाफा हुआ है। जिला डोडा के मुख्तलिफ इलाकों से मिली तफसलात के मुताबिक गुज़श्ता 3 दिन कबल और कल शाम की तेज हवाओं और जालाबारी ने एक बार फिर खड़ी फसलों और समरदार दरख्तों को नुकसान से दोचार किया है, जिसके सबब फसलों और मेवा सनत से वाबस्ता लोगों को सख्त तरीन माली मुश्किल से दोचार होना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता दिनों इलाका घरमुल, दंदल, लाड़ी, पोती, खंडान, गाडान, शामठी और कासीगढ़ के इलाकों में जालाबारी से फसलों और दरख्तों को सख्त नुकसान पहुँचा है। इसी तरह गुज़श्ता शाम दूर उफ्तादा इलाकों में जबरदस्त जालाबारी हुई है, जिसके सबब लुडना नाला, टंडर नाला और बगला बरत नाला में काफी हद तक पानी की सतह में इजाफा हुआ है। दंदल, कास्तीगढ़, मुंडहार, लाड़ी, मरमत के लोगों ने शहरबीन को बताया कि गुज़श्ता शाम की मुसलसल जालाबारी ने खड़ी फसलों और समरदार दख्तों को तबाही के दाने पर पहुँचा दिया है, जबकि गुन्ना

0: आवली मासरी के लोगों ने बताया कि लुडना, पुन्याला, गढ़त्तर, मलवाना, दड़ा, शेखपुरा में तेज हवाओं के साथ ही जालाबारी शुरू हुई और डेढ़ घंटा मुसलसल जालाबारी ने खड़ी फसलों और मेवा फल को सख्त नुकसान किया और जमींदारों और मेवा सन्नत से वाबस्ता अफराद के रोजगार को सख्त नुकसान किया है। बगला भारत के एक सरकर्दा सामाजिक कारकुन मसूद हयात भांडे ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि बगला भारत में गुज़श्ता शाम की तेज हवाओं और जालावारी ने कई खड़ी फसलों के साथ साथ अखरोट, आलू, राजमा फसल का बहुत बड़ा नुकसान किया है और मेवाजात जिनमें मुख्तलिफ अकसाम के सेब, नाशपाती, खोबानी, आड़ू फल को तकरीबन 80% जमीन पर गिरा दिया और बचा 20% मेवाजात को जालाबारी से बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से दही किसानों, मेवा शोबा से वाबस्ता अफराद के जरिए मुआश को काफी धचका लगा है। उन्होंने सरकार और इंतजाम से जालाबारी से हुए मेवा सन्नत को नुकसान का तखमीना लगाने और मुतासरा अफराद को माकूल मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। दही किसानों व मेवा सन्नत से जुड़े मुख्तलिफ अवामी वफूद ने इस नुमाइंदा को बताया कि गुज़श्ता साल भी यहाँ के लोगों को काफी नुकसान पहुँचा था मगर अभी तक किसी भी फर्द को मुआवजा अदा नहीं किया गया है, जिस पर यहाँ के मुतासरीन में इंतजामिया और महकमा एग्रीकल्चर व महकमा हार्टिकल्चर के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि महकमा एग्रीकल्चर व बागबानी सिर्फ नुकसान की रिपोर्ट्स मरतब करते हैं मगर मुआवजा गुज़श्ता 4 बसों से किसी भी फर्द के हक में फराहम नहीं किया गया है। इन लोगों का मजीद मानना है कि महकमा एग्रीकल्चर व महकमा हार्टिकल्चर के पास सरकार की मुतद्दिद फलाही स्कीमें हैं मगर यहाँ के बागबानी व जमींदारी शोबा का साथ जुड़े अफराद को इन स्कीमों के बारे में कोई भी इलम नहीं है और न ही लोगों को इन स्कीमों के बारे में बताया जाता है और न ही तशहीर दी जाती है कि ये स्कीमें कहाँ जाती हैं, कहाँ कहाँ इनको अमलाया जाता है और फंड्स कितने दस्तियाब होते हैं, कहाँ खर्च किए जाते हैं, किसी को मालूम नहीं। अगर इनकी तरफ सरकार छानबीन करे तो गफलाबाजी का एक बहुत बड़ा सुराग मिल सकता है।
1: डोडा में जालाबारी से फसलों को नुकसान, नसीर खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी और इस रिपोर्ट के नष्ट होने के दौरान ही हमें पुलवामा से शबीर भट्ट ने इतला दी है कि राजपुरा पुलवामा के बालाई इलाकों में भारी जालाबारी हो रही है। गांधी किंग पीस फाउंडेशन के सदर बराए जम्मू कश्मीर डॉ मोहम्मद अयूब मत्तू ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुरजोर अपील की है कि अहरबल को भी दीगर सियाहती मकामात की तरह दोबारा खोल लिया जाए ताकि इलाका नूराबाद की मकामी आबादी को माकूल रोजगार मयसर हो सके और साथ ही वादी आने वाले सयाहों को अहरबल की खूबसूरती का लुत्फ लेने का मौका मिल सके। मोहम्मद अयूब मत्तू के बकौल अहरबल को जब से सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है तब से नूराबाद के नौजवान रोजगार के हसूल में तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इधर पीडीपी के जिलाई कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ अहमद मलिक ने आज रफियाबाद के बाराई इलाका जात खामू, ब्रंदुब, ब्रमन, शालकोट और मुल्हिका देहात का दौरा किया और वहां हालिया जालाबारी से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। अलावा उन्होंने कितरनाड़ीबल में आग की हालिया वारदात में हुए नुकसान का जायजा लिया और मुतासरीन को माकूल मुआवजा दिए जाने का हुक्काम से मुतालबा किया। इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम को पहुंचेगी। याद रहे कि इस साल यात्रा की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 670 नीम फौजी दस्तों की कंपनियां तैनात की जा रही हैं जो अब तक की सबसे बड़ी तैनाती होगी। उधर यात्रा से जुड़े मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स मसलन मरकबानों, पालकी वालों और छोटे दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है और यह अमल 20 जून को मुकम्मल होगा। ताहम अब की बार रजिस्ट्रेशन का काम खासा आसान कर दिया गया है। यही नहीं, यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले खच्चरों और घोड़ों को टीके लगाने में भी गैर मामूली संजीदगी का मुजाहिरा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान।
2: इस साल 57 रोज जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान बालतल की तरफ से अपनी खदमात मैसर रखने वाले मरकबानों, पालकी वाले, पिट्ठू वाले और दीगर मजदूरों की रजिस्ट्रेशन आज जीमैक्स पोर्टल पर की जाती है और ये पोर्टल 20 जून तक खुला रहेगा। वजह रहे सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। यात्रा को इस साल खुश असलूबी और अहसन तरीके पर मनकद कराने के लिए जहां जिला इंतजामिया गांधरबल की जानिब से खातिर खा इंतजाम किए जा रहे हैं वहीं यात्रा के दौरान मुख्तलिफ तरीकों से अपनी खदमात मैसर रखने वाले मजदूरों, मरकबानों, पिट्ठू वाले और पालकी वालों की रजिस्ट्रेशन पहले ही की जाती है ताकि इन

दोस्तों प्रोग्राम के नाम अगली फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट पंजाब से। आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी जजूरिया, गगनदीप जजूरिया, बेबी आरजू जजूरिया और गुड्डू। आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है मनमौजी। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप है फजल का पंजाब से, भूषण खेरा, लाड़ी खेरा, शालिनी खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, टिवानसी खेरा, वानी खेरा, आर बी खेरा और जीवन बुक। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। बद्रवा से मेल आया है पुरुषोत्तम का। वार्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा। निसार सलमानी ने मेल भेजा है दनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। आपके साथ है नौशाद, बेबी आलिया और आयान बाबू। पांडर कुआड़ा से मेल आया है अनिल बुरांडे की जानिब से। आपके साथ हैं उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री। बलारशाह से सूरज, प्राची और एकलव्य। और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध ने मेल भेजा है। पेश है आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज में नगमा, फिल्म मनमौजी से।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़, और वादी की आवाज़ के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के हुए नगमे। दोस्तों, अब पेश है फिल्म कर्ज से नगमा, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। सुनना चाहते हैं सल्लर पहलगाम से पीरजादा महराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन और कैसरुद्दीन। चंद्रनगर सहारनपुर से मेल आया है सुरेश डोम, देवशंकर डोम, सोनाली डोम और आशा डोमिन की जानिब से। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम ने मेल भेजा है। बेबी अंसारी, निशा अंसारी और डब्लू अंसारी का मेल हमें मौसूल हुआ है इंदिरा विहार दिल्ली से। बक्सर बिहार से राजवली अंसारी, एसटी राज और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त। जिला खरगोन सनावत एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से मेल आया है लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप की जानिब से। और गोविंदपुर सीकर राजस्थान से मेल आया है दातार सिंह, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत की जानिब से। सुनिए अपनी पसंद पर किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में नगमा, फिल्म का नाम है कर्ज़।

दोस्तों ये मेल हमें मौसूल हुआ है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। आप हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित, प्रथमेश देशमुख, स्वरत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर से मेल आया है रमेश चंद्र चौहान की जानिब से। आपके साथ है मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गार्वी और हिमाक्ष। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी ने मेल भेजा है स्वराष्ट्र राजकोट से। ग्रीन चौक मोरबी से कुंदन, रंजन और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त। राज पैलेस माओनाद बंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा माओ से ये मेल हमें मौसूल हुआ है मुन्ना बाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू सरनकर की जानिब से। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मेल आया है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून की जानिब से। आप सभी दोस्त सुनना चाहते हैं आशा भोसले की आवाज में नगमा फिल्म अंगूर से, सुनिए अपनी पसंद।

जी दोस्तों, अब पेश है मुकेश की आवाज में नगमा। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में और सुनने के ख्वाहिशमंद है संबलपुर कोंकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा एमपी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार डकसे, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, बाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल आया है सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी की जानिब से, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा एमपी से शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, जिक्रा डावर और आयशा खत्री, जिला दार धर्मपुरी से मेल आया है मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री की जानिब से, दिनेश वर्मा ने मेल भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। आपके साथ हैं करुणा वर्मा।

0: दोस्तों, इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 8:30 होने को हैं, आइए सुनते हैं सराजी मौसिकी। आगाज में समाप्त कीजिए नारायण कटोच की आवाज में ये सराजी लोकगीत।

0: का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे सुनेंगे आप इवनिंग न्यूज़ और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। 9:30 आप सुनेंगे युवा भारती कार्यक्रम। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए

0: प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

का भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमा के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली की खातिर शराकतदारी की पेशरफ के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमा के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिला रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगे मील से बिला रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की जोड़ी सियू सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिशा क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में 3 T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से 1 माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ज्वालाबारी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत

0: सामने 169 रन का निशाना रखा। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों पर आधारित प्रोग्राम गाने पुराने। शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं सोनी महवाल फिल्म का गीत अनवर और आशा भोंसले की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत से संवारा है अन्नू मलिक ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आइए आप सुनते हैं चांदनी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत से समारा है शिव हरी ने।

बीबी हो तो ऐसी। सामिन आइए सुनते हैं इस फिल्म का नगमा। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोटवाल की आवाजों में बोल समीर के हैं, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए आप सुनते हैं फिल्म आपकी कसम का नगमा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप समाप्त कर रहे थे पुरानी फिल्मों पर आधारित प्रोग्राम गाने पुराने। ये आकाशवाणी भद्रवाहे FM 101 MHz पर। श्रोताओं, रात के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल की मजलिस में सुबह 7:51 पर आपकी खिदमत में पुनः उपस्थित होंगे। जब तक के लिए अनुमति चाहते, शुभरात्रि, जय हिंद।